आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि। तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का

0: समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने श्री रामचरित मानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 402। मुख्य गायक स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

ज्ञान और भक्ति मार्ग की मीमांसा करते हुए काकभुशुंड ने जहाँ ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी, वहाँ दूसरी ओर भक्ति को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है वो अपने आप अनन्य रूप से परम प्रकाशित जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है जिसे दीपक की भांति किसी साधन से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है

उनके समीप काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें जानना चाहिए जो इस अनुपम मणि को पाने का यत्न करते हैं, और इसे प्राप्त करना कष्टसाध्य नहीं होता। इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले रामकथा, सत्संग, सुबुद्धि, विवेक और वैराग्य के द्वारा सहज ही इसे प्राप्त कर लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस, एपिसोड संख्या थी 402। मुख्य गायक स्वर था भूपेंद्र सिंह का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार। जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौटते हैं, कभी अवसर बनकर तो कभी आशीर्वाद बनकर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं आनंद कुमार का गाया ये भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों का गाया। वंदन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मिली जुली आवाजों में अगला भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडकर और साथियों का गाया। वंदन कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया ये भक्ति गीत।

इस भक्ति गीत के साथ आज का वंदन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में सूरज फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे साजन फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं द ट्रेन। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। कार्यक्रम में होती है थोड़ी बहुत बातें और आपको सुनवाते हैं हम प्यारे प्यारे से गीत। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ और इस गीत के जो बोल हैं उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है, कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। दोस्तों ये जो अभी आपने गाना सुना वो गाना हमने लिया था फिल्म जब हैरी मेट सेजल से, और उसका टाइटल था सफ़र। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सफ़र के बारे में। जहाँ हम बातें करेंगे रास्तों की, यादों की, मंजिलों की और मुसाफिरों की, जो हर दिन ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों कभी ट्रेन की खिड़की से हमने भागते हुए पेड़ देखे, कभी बस की आखिरी सीट पर बैठकर दोस्तों संग गाने गाए हैं, या फिर किसी अनजान शहर की गलियों में खुद को खोजा है। यही तो है सफ़र, जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता बल्कि हमें खुद से भी मिलवाता है। तो दोस्तों अगले कुछ समय के लिए यानी कि 1 घंटे के लिए हम बातें करेंगे इसी पर, कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ बातें और शानदार गाने और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ। आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे पहले सफ़र के बारे में। जी हाँ, हर इंसान को अपना पहला सफ़र याद रहता है, चाहे वो उसकी पहली ट्रेन की यात्रा हो, या फिर फैमिली ट्रिप हो, या फिर दोस्तों के साथ पहली स्कूल ट्रिप हो, या फिर पहली हवाई यात्रा हो। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए आपकी भी पहली यात्रा कौन सी थी और किसके साथ थी, और आपने उसमें क्या क्या एंजॉय किया था। क्योंकि दोस्तों, सफ़र हमें सिर्फ जगह नहीं दिखाता, ये रिश्तों को भी करीब लाता है।

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। असल में ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है, कभी खुशी है तो कभी संघर्ष है, कभी लोग साथ चलते हैं तो कभी लोग रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन हर मोड़ हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सफ़र में चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन सफ़र हमें हमेशा कुछ न कुछ नया ही सिखाता है।

दोस्तों, अगर सफ़र की बात हो और अपने देश की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, भारत में हर सफ़र अपने आप में एक कहानी है, क्योंकि अगर किसी इवेंट के चलते 4 छुट्टी भी आ जाती है तो हम यही सोचते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, या फिर मौसम थोड़ा सा सुहाना

हुआ तो चले लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं। लेह की ठंडी हवाएं, गोवा के समुद्र के किनारे, उदयपुर की झीलें और वाराणसी की शामें, हर शहर कुछ कहता है। और सबसे खास बात, सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं होता, लोगों का भी होता है।

दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। दोस्तों, जैसे ही मई जून की गर्म हवाएं चलती हैं, स्कूल की घंटियां कुछ दिनों के लिए शांत होने जाती है और बच्चों के चेहरे पर खिल उठती है एक अलग ही मुस्कान, क्योंकि आ जाती है गर्मी की छुट्टियां। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं और कुछ स्कूलों में होनी बाकी है। क्योंकि बात हो रही है सफ़र की, तो सफ़र को गर्मी की छुट्टियों की तरफ भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों का मतलब है नानी का घर, आम का अचार, छत पर पिछी चारपाई, रात

की ठंडी हवा और वो लंबा सफर तय करके ट्रेन की खिड़की से भागते हुए पेड़ों को देखना और पहुंच जाना नानी के घर। गर्मी की छुट्टियां और नानी के घर का सफर। जी हाँ दोस्तों, ये वो सफर है जो आज कुछ बच्चे अब इस सफर पे जाने वाले हैं और कुछ जो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं लेकिन उस सफर को याद जरूर करते हैं।

0: यूं ही सफर, यूं ही सफर ये कट जाएगा।
1: दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं अभी नानी के घर जाने की। तो जब भी आपका लगे आपको कि हाँ अब बस काम ख़त्म हो गया है, तो निकल जाइए, अपने बैग पैक कीजिए और बच्चों को ले जाइए नानी के घर। क्योंकि नानी के घर जाकर बच्चों का जो पूरे साल का जो कोटा होता है कहानियों का, घूमने का, फिरने का, मौज मस्ती करने का, वो सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में ही पूरा होता है। क्योंकि वहाँ पर उनके सभी कज़न्स उनको साथ में मिलते हैं, मासी के बच्चे, मामा के बच्चे सभी मिलके खूब मस्ती करते हैं और उनका जो मस्ती भरा जो सफ़र है वो उनको पूरे साल याद रहता है।

और अपनों का प्यार होता था भरपूर। लेकिन दोस्तों, आज वक्त बदल गया है, सफ़र अब छोटे हो गए हैं, लेकिन यादें आज भी उतनी ही लंबी हैं। अब बच्चों के हाथ में मोबाइल नज़र आता है, शायद वो मज़ा कहीं पीछे छूट गया जो ट्रेन की खिड़की और नानी की गोद में मिलता था। ये सब बस पुरानी यादें रह गई हैं, लेकिन हम चाहें तो उस समय को वापस ला सकते हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर वो पुरानी चीज़ें उनको वापस दिखाकर उस ओर ले जाया जा सकता है, जिससे कि उनमें अपनापन बढ़े और सम्मान भी बढ़े दूसरों के प्रति।

दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों में वो बचपन मुस्कुराता था। नानी के घर का हर कोना जन्नत नजर आता था। न मोबाइल की दुनिया थी, न इंटरनेट का शोर, बस कहानियाँ, आम

तो दोस्तों, आज की हमने कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बात की सफ़र के बारे में। जी हाँ, हमने जाना कि रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि यादों तक भी ले जाते हैं। और अगर आपकी भी ऐसी कोई खूबसूरत सी याद हो तो उसे याद कीजिएगा और मुस्कुराइएगा भी। तो दोस्तों, चलते चलते चलते यही कहेंगे कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। और इस सफ़र में अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रखिए और सुनते रहिए कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। और आज का ये कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम बस यहीं तक।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIAD

0: पीएमके विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग सहयोग पर विशेष जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों सांसदों विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग

0: उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप

0: में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be

0: उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। तो इसी खास शुरुआत के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका साथी, आपका मेजबान, आपका दोस्त हिमांशु अवस्थी, और मेरे साथ मौजूद हैं
1: मैं सूफिया खान।
0: दोस्तों, हर सुबह सूरज की पहली किरण अपने साथ एक नई सोच, एक नई दिशा लेकर आती है कि जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है, मौका खुद को बेहतर बनाने का, मौका कुछ नया सीखने का, और मौका अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का। तो क्यों ना इस सुबह की शुरुआत करें एक मुस्कान के साथ, थोड़ी सी उम्मीद के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

कंट्रोल रूम से हैं पारसपुरी गोस्वामी। ट्रांसमीटर पर हैं चंद्राराम पटेल और कैलाश चंद्र सोलंकी। अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ है सोनिया देवड़ा और एफएम चैनल पर है बलवीर सिंह। नमस्कार, प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं संजय व्यास। संयोजन है राजेश लामरोड़ का। और इसी के साथ श्रोताओं, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और

मिनटों तक हम इस दिलचस्प विषय पर या कहे बात करेंगे सुकून पर। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, और फिलहाल हमारी प्लेलिस्ट से निकल कर आ रहा है ये गाना।

0: दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा, लेकिन हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, हर कोई भाग रहा है, कोई करियर के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम कमाने में लगा है। लेकिन इस भाग दौड़ में एक सवाल बार बार हमारे सामने आता है कि आखिर आजकल लोगों को सच में क्या चाहिए, सुकून या फिर सक्सेस? क्योंकि कभी कभी लगता है कि सफलता मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और कभी लगता है कि अगर मन शांत नहीं है तो फिर किसी भी सफलता का क्या फायदा।
1: तो दोस्तों, अगले कुछ

0: श्रोताओं, सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए समय बिल्कुल नहीं बचता। सुबह से रात हो जाती है, काम में, मोबाइल में, अपना टारगेट पूरा करने में, सब कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में, लेकिन मन अंदर से थका हुआ महसूस करता है, थका हुआ सा लगता है।
1: दोस्तों, सफलता अच्छी बात है, लेकिन अगर मुस्कुराने का समय ही ना बचे तो शायद कहीं कुछ अधूरा सा रह जाता है।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून इन किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और 531 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र, और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुकून और सक्सेस की। दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी सिर्फ मंजिल नहीं, सफ़र भी होती है। आज का युवा बहुत एम्बिशियस है, बड़े सपने देखता है और देखना भी चाहिए, लेकिन लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करना, हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश करना, यही चीज़ धीरे धीरे मन की शांति छीन लेती है। और अगर सच कहूँ तो आजकल लोगों के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं।

0: श्रोताओं, सुकून की बात कर रहे थे हम, और सुकून जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में मिलता है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे घूमना हो, चाहे खाना बनाना हो, कुछ भी हो सकता है श्रोताओं, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें सुकून से जोड़ती है।
1: कभी अपने दोस्तों के पास हंस पाना, अपनों के साथ बैठकर चैन से बातें करना, और शायद यही छोटी छोटी चीज़ें असली खुशी होती हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी को हल्के अंदाज में जीना भी कितना ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। इसलिए शायद सक्सेस और पीस दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन सक्सेस ऐसी हो जो हमारी खुशी को ना छीन ले।

9 बजने वाले हैं श्रोताओं, फिलहाल हम रुकेंगे एक न्यूज ब्रेक के लिए और 9:10 पर फिर से हाजिर होंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार देकर।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर

0: पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई, वहीं कई गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।
1: सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीजें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों से

0: संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा की न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्यकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्ही गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में AI तकनीक के माध्यम से 2 चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में CBI ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: दोस्तों, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी हिमांशु अवस्थी, और मेरे साथ मौजूद हैं
2: मैं हूं सूफिया खान। एक बार फिर से श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार में, जिसमें ढेर सारी जानकारियां और बहुत ही चुनिंदा खूबसूरत गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। और इसी के साथ सुनवाते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब वक्त है आज के इतिहास को जानने का, इतिहास के उन पन्नों की ओर जाने का जहां दर्ज है 13 मई से जुड़ी कुछ बेहद खास और प्रेरणादायक घटनाएं।
1: श्रोताओं, बात करें साल 1880 की, तो आज के दिन थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के लिए जानती है, लेकिन आप जिस ट्रेन में सफर करते हैं श्रोताओं, उसकी सफलता के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। यानी आज ही के दिन 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल किया था।
0: दोस्तों, अब बात एक ऐसे युवा पर्वतारोही की जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को अपनी मेहनत से जीत लिया। 13 मई 1999 को जापान के पर्वतारोही केन नोगुची ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसी के साथ वो सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के 7 समिट्स विजेता बने।
1: उन्नीस सौ अठानवे में श्रोताओं, आज के दिन भारत ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए, और इससे 2 दिन पहले 11 मई को भी भारत ने इसी जगह 3 परमाणु परीक्षण किए थे।
0: दोस्तों, 13 मई भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। साल 1952 में इसी दिन स्वतंत्र भारत का पहला संसद

0: श्रोताओं, बात 13 मई 1962 की, जब महान दार्शनिक, शिक्षक और विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और भारतीय मूल्यों को एक नई पहचान दी।
1: और साल 2010 में आज के दिन भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

श्रोताओं, आज है 13 मई और बुधवार का दिन है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है आज। और आज मनाया जा रहा है अपरा एकादशी। ये अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं। और ये व्रत श्रोताओं, भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है, जिससे सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। और श्रोताओं, इस दिन दीप दान का भी विशेष महत्व है।

0: और इसी के साथ श्रोताओं, आज की खास बात करें तो सभी जगह जो है आज लू और गर्मी का जो पारा है वो बढ़ चुका है, और लू और गर्मी बढ़ चुकी है तीसरे दिन भी, यानी 45 डिग्री तक जो है तापमान पहुंच चुका है, और तपिश से पूरा शहर और पूरे लोग जो हैं वो बेहाल हैं। और श्रोताओं, ये लू जो है बढ़ती ही जाएगी, इसीलिए आम जन से ये आग्रह है कि हो सके तो घर में ही रहें, ज़्यादा धूप में ना निकलें, क्योंकि लू के थपेड़े जो हैं आपको चपेट में ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचें, और पानी जो है टाइम टू टाइम पीते रहें, और ख़ासकर बच्चे और बूढ़ों का ध्यान जो है वो आप रखें, उन्हें टाइम पे पानी पिलाएं ताकि पानी की कमी ना हो। और अगर बाहर जा रहे हैं तो ऐसा टाइम चूज़ करें जब तापमान जो है थोड़ा कम हो।
1: तो दोस्तों, आज कर लेते हैं खास बात में एक और बात की। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत है स्वरो उत्सव सुगम संगीत संध्या। 13 मई 2026 शाम ठीक 7:15 से बृहस्पति सभाकार, केंद्रीय कार्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। अब वक्त है काम की बात का, जो कि हमारा आज का खास सेगमेंट है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, पैसा, सक्सेस, फेम। लेकिन इसी भागदौड़ में हम एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन उसे खोते जा रहे हैं, और वो है अच्छी नींद।
1: अच्छी नींद ज़रूरी है श्रोताओं, क्योंकि ये हमारी मूड को ठीक करती है और अगर हम नींद सही से नहीं लेंगे तो पूरे दिन जो है थके थके महसूस करेंगे। इसीलिए आज की हमारी काम की बात में हम बात करेंगे कि अच्छी नींद आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है।
0: दोस्तों, कई लोग कहते हैं सोना तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि जो इंसान ठीक से सो नहीं रहा वो धीरे धीरे खुद को थका रहा है, शरीर से भी और दिमाग से भी। तो आज काम की बात में हम बात करेंगे अच्छी नींद आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है।
1: और जिस तरह से एक फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत होती है और जब वो चार्ज हो जाता है तो पूरी तरह से उस काम कर सकता है, इसी तरह हमें भी

0: एक चार्जिंग के लिए एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है ताकि सुबह उठकर हम पूरा काम जो है वो ताजगी से कर सकें।
1: क्योंकि श्रोताओं, जब हम सोते हैं तब सिर्फ आंखें बंद नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग दिन भर की थकान को भी ऑब्जर्व कर लेता है, मेमोरीज को एक तरीके से व्यवस्थित मैनेज कर लेता है और शरीर को खुद अपने आप रिपेयर भी करता है।
0: और रिपेयर की बात आई तो श्रोताओं, काम में मन नहीं लगता है हमारा।

0: वो 3 बजे आ रही है, तो पूरा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है।
1: क्योंकि रात में लगातार स्क्रीन को देखने से दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है और फिर नींद आने में हमेशा हमें दिक्कत होती है। यही वजह है कि सुबह उठते ही हमें हमेशा थकान सी महसूस होती है, चाहे 7 घंटे हम बिस्तर पर पड़े क्यों ना रहें।
0: हाँ, वो नींद नहीं होती क्योंकि हम एक तो है कि एक गहरी नींद आती है, वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि फ़ोन जो है सोशल मीडिया पर हमारी अधिकता ज़्यादा हो गई है। इस कारण से जो जो पहले जो नींद आती थी गहरी वाली, वो अब की दिनों में जो है वो कम हो गई है।
1: दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर अच्छी नींद के फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका जो पूरा दिन है वो चिड़चिड़ा सा खराब सा हो जाएगा। तो अच्छी नींद के कुछ फायदे भी हैं, जैसे आपका दिमाग तेज चलता है, याददाश्त आपकी हमेशा बेहतर रहेगी और अच्छी रहेगी, और तनाव जो है जो आजकल के युवा की या मैं कहूँगा हर एक व्यक्ति के हिस्से दिन के मैं कहूँगा उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ चुका है, चाहे वो काम का तनाव हो, उसकी रोज़मर्रा की दिक्कतें हों, तो वो भी कम रहेगा। इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपकी स्किन और आपकी हेल्थ दोनों अच्छे रहेंगी, और इंसान जो इमोशनली है वो पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा।
0: तो अच्छी नींद जो है वो सिर्फ आराम नहीं देती श्रोताओं, बल्कि ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बनाती है। तो अब से रात को फ़ोन चलाने का मन करे तो उसको रखिए साइड और लीजिए अच्छी सी नींद।

0: दोस्तों, अब वक्त है सप्ताह विशेष और आज बुधवार के इस खास अंक में हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक के उस ऐतिहासिक स्थल पर जहां पत्थरों ने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए बल्कि भारत के मंदिर वास्तुकला की दिशा ही बदल दी। आज की हमारी यात्रा होगी रावण पहाड़ी गुफा ऐहोल की। दोस्तों, जब हम किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें ऊंचे शिखर, नक्काशीदार स्तंभ, गर्भगृह और भव्य प्रवेश द्वार हमें बहुत से सामान्य से लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों के डिज़ाइन आखिर बनी कैसे? क्या ये एक ही दिन में तय हो गई थी? ऐसा नहीं है। दरअसल मंदिर वास्तुकला का स्वरूप कई शताब्दियों तक चले प्रयोगों का परिणाम है और इन प्रयोगों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला था ऐहोल। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच प्रारंभिक चालुक्य राजाओं ने ऐहोल को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ वास्तुकारों को नई नई शैलियों पर काम करने की पूरी आज़ादी मिली। किसी ने गुफा को काटकर मंदिर बनाए तो किसी ने लकड़ी जैसी छतों को पत्थरों पर उकेरा। कहीं उत्तर भारत की नागर शैली दिखी तो कहीं दक्षिण की द्रविड़ शैली, और इन्हीं प्रयोगों के बीच जन्म हुआ रावण पहाड़ी के गुफा मंदिर का,
1: जो कि कर्नाटक के बागलकोट जिले में ऐहोल में है, जिसे भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा जाता है। श्रोताओं, 6वीं शताब्दी में प्रारंभिक चालुक्य वंश द्वारा ये निर्मित है और ये एक प्राचीन शिलाकृत यानी रॉक कट शिव मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। ये रॉक कट गुफा है श्रोताओं, जिसके अंदर एक मुख्य हॉल है, दो उपकक्ष और एक शिवलिंग है, और यहाँ शिव के तांडव यानी नटराज, पार्वती और अंधकासुर पर विजय की एक विस्तृत नक्काशी भी मौजूद है। प्रवेश द्वार पर इसके नंदी की एक बैठी हुई प्रतिमा भी है, और श्रोताओं, ये कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है।
0: दोस्तों, कल्पना कीजिए, करीब 1500 साल पहले कलाकारों ने कठोर पत्थरों में जीवन फूंक दिया था। यहाँ शिव के कई अद्भुत रूप उकेरे गए हैं, विशाल मूर्तियां हैं, सुंदर मुद्राएं हैं और पतले वस्त्रों की महीन रेखाएं आज भी उस कला कौशल की गवाही देती हैं। और सबसे ज्यादा आकर्षक है नटराज रूप में शिव। ऐहोल में 125 से अधिक मंदिर और गुफाएं मौजूद हैं। दुर्गा मंदिर, लार्ड खान मंदिर, हर संरचना अलग सोच का उदाहरण है। दुर्गा मंदिर का अर्धवृत्ताकार आकार बौद्ध चैतन्य से प्रेरित है, वहीं लार्ड खान मंदिर में पत्थर की छत उस दौर की लकड़ी की वास्तुकला की याद दिलाती है। लेकिन रावण पहाड़ी इन सब में सबसे रहस्यमयी और सबसे साहसी प्रयोग माना जाता है। श्रोताओं, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं सिखाता, वो हमें यह भी बताता है कि महान चीज़ें प्रयोगों से जन्म लेती हैं। आज इन मंदिरों को हम परंपरा मानते हैं, वो कभी किसी कलाकार की कल्पना थे, और उन कल्पनाओं को पत्थरों पर उकेरने का साहस किया था ऐहोल के कलाकारों ने।

0: दोस्तों, अब एक ज़रूरी सूचना आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं कि जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति 15 मई को बंद रहेगी। गर्मियों को देखते हुए जल भंडारण और जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों की अति आवश्यक रखरखाव मेंटेनेंस को देखते हुए 15 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कैलाना, चौपासनी, सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 15 मई को होने वाली जलापूर्ति 16 मई को और 16 मई को होने वाली जलापूर्ति 17 मई को की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।
1: और श्रोताओं, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और अब बात करते हैं जयंती विशेष की। तो आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में हास्य कलाकार के रूप में अपनी पहचान जिन्होंने बनाई और करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाकर अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई। बात कर रहे हैं हम असित सेन की। 13 मई 1917 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे असित सेन ने अपने अभिनय की शुरुआत दुर्गाबाड़ी में चलने वाले कई बांग्ला नाटकों में अभिनय से की। कोलकाता में ही उन्हें एक नाटक कंपनी में रोल मिला और वो प्ले हुआ तो फिल्म निर्देशक विमल रॉय उनके अभिनय से प्रभावित हुए और उन्हें मुंबई लेकर चले गए। उनकी फिल्मों की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो उनमें है चांद और सूरज, नौनिहाल, ब्रह्मचारी, प्यार का मौसम, मंझली दीदी। 18 सितंबर 1993 को इनका निधन हो गया था।
0: श्रोताओं, अब बात टी बाला सरस्वती की। भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना थी। 13 मई 1918 को तमिलनाडु में जन्मी टी बाला सरस्वती अपने भाव अभिव्यक्ति कला के लिए विशेष रूप से जानी जाती थीं। इन्होंने भरतनाट्यम को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।

0: और जयंती विशेष पर हम याद कर रहे हैं श्रोताओं उड़िया साहित्यकार सच्चिदानंद राउत राय को, जिनके द्वारा रचित कविता संग्रह कविता 1962 के लिए उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ओडिया से सम्मानित किया गया। 1986 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनके कविता संग्रहों की बात करें तो पल्लश्री, जिसमें ओडिशा के ग्रामीण जीवन और समाज से संबंधित कविताएं हैं, और उनके काव्य संग्रह में पाथे, पूर्णिमा, रक्तशिखा, अभिजान प्रमुख है। और बात करें श्रोताओं, ब्रिटिश चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता रोनाल्ड रूस की भी आज जयंती है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये, और ये पुरस्कार उन्हें 1902 में दिया गया मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए, और उन्होंने अपने जीवन के अहम पड़ावों पर कविताएं भी लिखी थी।
1: दोस्तों, अब उनकी बात कर लेते हैं जो आज ही के दिन इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है अंग्रेजी साहित्यकार आर के नारायण का। दोस्तों, आज भी काफ़ी लोगों के बचपन की यादों में मालगुड़ी डेज की यादें ताज़ा होंगी। प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे ये। उनका पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1935 में प्रकाशित हुआ। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से द इंग्लिश टीचर, द गाइड, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, साथ ही कई कहानियाँ भी उन्होंने लिखी, जिनमें हॉर्स एंड गॉड्स एंड अदर स्टोरीज, अंडर द बैनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज हैं। 1964 में उन्हें पद्म भूषण, 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके नॉवल द गाइड पर फिल्म गाइड भी बनी है।
0: और आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं श्रोताओं बादल सरकार को, जो कि भारतीय रंगमंच के इतिहास में बेहद अहम योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 50 से ज्यादा नाटक लिखे, जो न केवल बांग्ला बल्कि हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में प्रसिद्ध हुए, और इन्हें भारतीय रंगमंच में तृतीय रंगमंच के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी कवि पत्रकार हसरत मोहानी जी को। अद्वितीय व्यक्तित्व थे ये। असल नाम इनका था सैयद फजलुल हसन। साहित्य की दुनिया में वो अपने उपनाम हसरत और जन्मस्थान मोहान के कारण हसरत मोहानी के नाम से जाने गए। इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की श्रोताओं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारा इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने ही लिखा, और उर्दू गजल के क्षेत्र में भी उनका बड़ा नाम है। इनकी सबसे लोकप्रिय गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।

0: दोस्तों, हर मुलाकात कुछ यादें छोड़ जाती हैं और हर आवाज़ दिल में एक एहसास छोड़ जाती है। इन्हीं एहसासों के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ मौजूद हैं
1: मुझे यानी सोफिया खान को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहला लोकगीत चेतन दास वैष्णव की आवाज़ में।
1: राम नाम हरदे धर्यो होयो पाप रो नास, तुलसी के वे राम ने भई हे साचो साच।

सीमा मिश्रा और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनते हैं गैर फिल्मी नगमे और पहला नगमा है आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज़ों में।

इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे पलाश हुसैन का गाया ये गीत। आइए अब सुनते हैं शान की आवाज़ में अगला गीत।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता, 11 बजे हैं और अब समय है उस प्रोग्राम का जिसका नाम है फिल्म संगीत।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया फीडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

अभी आपने ये गीत सुना, इसे हमने लिया था धनवान फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए सुनिए ये प्रस्तुति, स्वर है छोटी बानो।

बरसन लगा नैण। धोला

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, गाजी खां के गाए इस गीत के साथ अब आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। प्रोग्राम का नाम सुगम संगीत और आवाज गुलाम अली की।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन का 1 बजा है। कुछ देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के एसओजी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। एसओजी के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर

0: विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के ही एक लिपिक मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के दो केन्द्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिनभर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया आज अपा जानकारी ले रहा हाँ कि भाई मिर्ची री फसल महीने भात भात राजी का रोग है वे लाग जाया करे तो इन रोगारी अपा रोकथाम है वह अपा किन तरह से कर सका। हम जो बात आवे है कि भाई किसान भाई साल रहा महीने तीन दान जी की मिर्चरी जी की पैदावार है कि तरह महीने लेवे जी हमें आप बात करा कि भाई वर्षाद ऋतु जी की मिर्चरी फसल है उनडो जी को टाइम है वो हमें आने वालों टाइम जो महीनो अपने जून है जुलाई है इनडो रेवेला और हियाली ऋतु महीने आप बात करा सितम्बर अक्टूबर महीने आप बढ़िया किसान भाई मिर्चरी आप बुआई कर दे और हमें जो खेतर महीने मिर्चरी पैदावार उबी है तो ए आप किसान भाई फरवरी मार्च महीने बढ़िया आप मिर्चा भाई है और हमें जी का पौधा है बढ़िया तैयार होयोड़ा है। किसान भाई आपने ठाई जाए भाई एकदम तो ही दो मिर्च रो बीज लागे कोनी पहला आपने कहीं करना पड़े कि मिर्च रे रोप जी को है वो आपने तैयार करना पड़े और रोप जी को निरोई मोटो हाथ रे लंगे टंगे आप हो जावे तो बढ़िया आपा कई करा के ठाडा पोरे बगतर महीने आपने खोडार महीने आपा ओदा देवा छेती राख परान आपा ओदा दे एन पछे जी को रोप रो जी को डाकलो है बिना आपा छोप दा और आड़ पाड़ बढ़िया आपा मिट्टी ने करा और बाद महीने लारे लारे आपा सिंचाई करा पौधा आप रे पांगरे और पौधा जी का हमारा आपा बात करा मिर्चरा घनी मोटा योड़ा है तो हमें इन पौधा महीने भात भातरा जी का कीट है वे भी आप रे लाग जाया करे जी हमें बात करा इन पौधा महीने

वेद जी की लट है अभी आप रे लाग जाए करे। आ लटका ही करे मिर्चरी जी की जड़ है उनने बहुत नुकसान पहुंचाया करे और फसल ने अधिक नुकसान वे कई वे के पूर्णतया आज की फसल है आ नष्ट भी हो जाया करे। हम बात आवे कि भाई आ सफेद लट लागी है इन मिर्ची रे पौधा महीने तो इनकी रोकथाम किसान भाई के कर सके इन वास्ते फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरोन 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर हिसाब से पौधारी रुपये पहला आपने जमीन महीने किसान भाई आपने मिला दे तो जिनसु कहीं वे क्या सफेद लट है आ निपन पे। हम जी बात करा सफेद मक्खी परजीवी जिन्हें आप थ्रिप्स किया करा इन्हें हरो तिलो और मोइलो जी को है वो भी मिर्ची पैदावार महीने लाग जाया करे तो ए कीट कहीं क्रिया करे किसान भाइयों पत्तियां और पौधा रोजी को कोमल भाग वे उन रोजी को रस चूस परार फसल ने बहुत नुकसान पहुंचाया करे। हम बात आवे कि भाई हमें रोग की कर डाब की कर तो कीटरी रोकथाम रे वास्ते फास्फोमिडोन 85 SL 0.3 मिलीलीटर या मेलाथियन 50 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी दरसू आपने स्प्रे करना चाहिए।

किसान भाया आपा जानकारी ले रहा था कि भाई मिर्ची फसल महीने जिका रोग लाग जा कोई कीट लाग जा तो उनकी रोकथाम आपा की कर सका। हमें मिर्ची पैदावार महीने सूत्र कर्मी भी लाग जाए करे इनके प्रभाव से पौधारी जड़ा महीने कई हुए के गांठा बन जाया करे जिन कारण कई हुए के पौधारी जी की पत्तियां है पीली पड़ जा पौधारी जी की वर्दी है जिन्हें आप ग्रोथ का रुक जा डब जा और पौधा रो विकास ही पूरा अपने रुक जाए करे। रोकथाम वास्ते किसान भाई कहीं कर सके है की मिर्ची रुपये भगत महीने 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरोन 3 ग्राम प्रति हेक्टर दरसू भूमि में आपरे बढ़िया मिलावे। पौधारी जड़ा ने आपरे 1 मिलीलीटर फास्फोमिडोन 85 SL प्रति लीटर पानी रे घोल महीने आधा घंटा तक आपरे भिगो परार खेत महीने रुपये करे। क्या उन्होंने मतलब है कि जिको मिर्ची रो रोप है उनने आपने भिजोन राखनो है पच्चे आपने सीधो उठे खोडा महीने आपने छोबनो है। आ तो बात होगी किसान भाइयों के ए जिका कीट है एक किन तरह से रोग फैलाया करे। हमें और भी जिका रोग है जी आप बात करा हाँ अर्ध गलन जी को हो जाए करे जिन्हें आप डैम्पिंग ऑफ भी किया करा। इन रोग से कहीं वे के पौधो आकार मैंने एक तो छोटो रह जा जमीनी सतह माते जी को तनारो भाग वे वो आप रे कालो पड़ जा कमजोर हो जा जिन कारण कहीं वे के पौधो मुरझा जाए करे जिन्हें आप कहा भाई वो पौधो खत्म हो गए। हमें इन्हें रोग री रोकथाम वास्ते किसान भाई कहीं करे के भाई बीजरी बोयू पहले ही आप रे थायरम या कैप्टोन ने 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजरी दरसू बढ़िया आप रे उपचारित कर परान मिर्च रो जी को रोप है वो किसान भाई ने तैयार करना चाहिए। और जटे मान लो अपने रोप परा जी का खोडा बायोडा है जिन्हें आप नर्सरी किया करा वटे आपरे जमीर आड़ पाड़े जिकी वा मिट्टी वे उन्हें 4 इंच 6 इंच मतलब जमी ऊंची होनी बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने मतलब वो है की मिर्च रो जी को आप रोप बावा वो बनिस्पत खेतरी जमी जिकी है वह नीचे नहीं रहन अपने ऊपर रहनी चाहिए थोड़ी। हमें एक मिर्चरे महीने छाछिया रोग भी हो जाया करे। इन रोग से कई वे के पतिया माते सफेद चूनी जी का धब्बा है ए आप रे बन जा और रोग हलो वे मान लो वो पतिया पीली पड़ पड़ी ने आप रे जड़नी हरू हो जाया करे। हमें छाछिया रे रोकथाम रे वास्ते किसान भाई कई करे के कैराथियन LC 1 मिलीलीटर या कैलेक्सिन ने 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रे घोल महीने आप रे बढ़िया स्प्रे करे और भी मान लो जरूरत पड़ जा तो जरूरत अनुसार 15 दिन रे पचे फाची छेती हूँ भले आप रे एक बार दूजी दान भी आप स्प्रे कर सका। मिर्ची फसल महीने जीवाणु धब्बा रोग भी हो जाए करे। इन रोग से पतिया जिकी है छोटा छोटा जलीय जिका है धब्बा बन जा और बाद रे महीने गहरा भूरा रंग रहा दिखने लाग जाया करे और आखिरकार पतियां जिकी रोगग्रस्त हुए वे पीली पड़परी जड़नी हरू हो जाया करे। हमें किसान भाई रोकथाम वास्ते कहीं करे के भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 मिलीग्राम या पचे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ने 3 ग्राम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनावे आपने स्प्रे करे भले भी मान लो जरूरत हो जा तो 15 दिन अंतराल माते भले छेती राग पड़ा और किसान भाई एकदम भले कर दे। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई मिर्ची फसल महीने जिका रोग है कीट लाग जाए करे उनकी रोकथाम आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो बगत पूरा वेरियो है दिनेश

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गणगौर।

0: गणगौर कार्यक्रम सुनन वाला सगला हितालु श्रोताओं ने घणीमान राम राम और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं आ वेगो है दोपहर रो वखत अपार इन कार्यक्रम पर बखत आपरे सामी राजस्थानी गीता और राजस्थानी बातारो ओ आपरो मन मोहनो कार्यक्रम लेर हाजिर हूँ मंजू चारण और मारे साथ अपने एक और मीठ बोली सखी पूनम देवड़ा।
1: बिल्कुल
0: तो जी आपने भी राम राम।
1: बिल्कुल मंजू जी आपने भी घना मानसू राम राम और गणगौर कार्यक्रम सुनने वाली सगली सखिया ने भी हेत प्रीत सु भरियोड़ा राम राम। तो मंजू जी आज कार्यक्रम की शुरुआत करा और आज है एकादशी तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत करा इन लोक भजन रे साथे।
0: बिल्कुल

0: तो देखो पूनम जी, अबार अपा ओ हरजा सुनियो, ई मैं यूं कियो भी हो के कानूडा लाल घड़लो मारू भड़ देरे। बिल्कुल आपने इन जेठ री तपती दोपहरी में कटे जाता ना, और इतनी तेज तावड़ पड़े, और तावड़ा माने एक ठंडी छिया दिख जावे, और छिया में एक मटको रखियोड़ो जे दिख जावे, तो आपा कह नहीं वाओ तिरसो कितो ही मरतो आदमी रहे, और उठे जाए ना आप पानी पी देवे तो आत्मा कितनी तृप्त रहे।
1: गड़ोत्तर हो जावे एकदम इन
0: बिल्कुल
1: मटके रे ठंडे पानी सु।
0: हाँ, और आजकल देखो कि मटका रो उपयोग कम देखो, हालांकि कम करा तो मटका मते दो लाइना कहना चाहवा कि कदे हर आंगन री शान हो मटको, कदे हर आंगन री शान हो मटको, आज कटे गुमनाम है मटको, सिर्फ माटी रो बर्तन नहीं है वो, अपनी परंपरा री ठंडी सांस है वो मटको।
1: बिल्कुल सही क्यों मंजू जी। देखो कि मटको जद भी दिखे नहीं, अपन आज भी घर में मटकी रो पानी अगर पियो तो वो कितो फायदेमंद है, शरीर वास्ते भी फायदेमंद है
0: बिल्कुल,
1: और गर्मी में गड़ो भीतर करे ही है।
0: पर आजकल का टाबरान देखो आता ही फ्रिज में बॉटल निकाली और सीधो पानी पी, और वो पानी कटिन कटिन नुकसान करे।
1: बिल्कुल सही कियो आप। और आज ही बात करा तो आज है अपरा एकादशी, और अपरा एकादशी रो मतलब है अपार पुण्य वाले। आज ही दिन कोई भी शुभ काम करा, कटे भी मंदिर है मायने, कटे किनी जरूरतमंद रे अपा सहायता कर दा, ठंडो पानी किनी उपलब्ध करवा दा, या पछे जीव जिनावर है व्यार वास्ते छिया री व्यवस्था करने वटे है जिको पानी री व्यवस्था चारे री व्यवस्था करवा दा, ए सब इन जेठ रे महीने जो भी अपा शुभ पुण्य काम करा तो वीरो फल अपने तो मिले ही है, पर जिन्हें इन जरूरत है विन्हें ज्यादा है जिको इन लाभ मिले जेठ रे महीना में कि भाई मैंने ठंडो पानी उपलब्ध हो गयो, मैंने ठंडी जगह बैठने मिल गई।
0: बिल्कुल आपसे क्यों, और यूं भी क्या करे का आप रा कितना ही पाप करियोड़ा है, अरे अगर आप इन्हें गैर्स ने करो तो इनसु मिट भी जाया करे।
1: बिल्कुल
0: तो गांव में अपन कई बेना गैर्स तो करी वही वन सुनावा एक और गीत।

0: तावड़ो मंदो पड़दा रहे, पर जेठ रो महीनो है तो तावड़ो मंदो की कर पाड़ी।
1: बिल्कुल।
0: जट जेठ रो महीना में तावड़ो पाड़ी जड़ी तो सावन रे महीने चोखी विरखारी आस बंदी। अपना किसान अटे कहवे भी है कि जेठ तपे सावन जड़े तो धान भरे कोठी पड़े, मतलब जेठ में खूब ताप पड़सी तो

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: बिल्कुल, इन अंतराल पर एक बार फिर हूँ आप स्वागत है सखिया इन गणगौर कार्यक्रम में। आपरे साथे आपरी सखी मंजू चारण।
1: और पूनम देवड़ा।
0: तो सखिया ने आज अब सुनावा पूनम जी एक भेंट वार्ता रिकॉर्डिंग, जिन्हें अब आप सुनो ला मनीष सोलंकी सु कालू राम प्रजापति री बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, जैसे कि आपको पता है कि हम अक्सर कुछ ऐसे यूनिक लोगों को आपसे मिलवाने के लिए स्टूडियो में लाते हैं, जिनसे आपको लगता है कि इनसे बात अगर नहीं होती तो प्रोग्राम में कुछ अधूरापन रह जाता। हमारी खुद की इच्छा रहती है कि इस तरह के लोग हमारे साथ आए, हमें भी अच्छा लगता है उनसे बात करना, और आपके लिए जब उनकी बातें, उनकी व्यक्तिगत अनुभव आप तक पहुँचते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एमिनेंट और लोकप्रिय गायक श्री कालूराम जी प्रजापति स्टूडियो में हैं। आज वो गाएंगे नहीं, आज हम उनसे बातें करेंगे, हम मैं सवाल पूछूंगा और वो जवाब देंगे। कालूराम जी
3: हुकम रहा,
2: स्टूडियो में आया हमारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: और बहुत सारा श्रोता आपका गाना रहा, बहुत मुरीद है, बहुत पसंद करे आपका गायोड़ा गाना ने। तो आज खुद आप गा नहीं रहे हो, लेकिन आज वहां हाथे बात कर रहे हो,
3: हाँ
2: तो कैडो लाग रही हो
3: बहुत बढ़िया लगे।
2: आज आसाज नहीं आप रहे, सिर्फ आवाज आवाज है।
3: हाँ
2: तो आप बताओ कि मुझे को सफर है गाँव वालों, आप रहो कदू शुरू हुए हो, कितना सालों गा रहे हो आप बचपन में?
3: यूं तो मैं बचपन उगा रहा हूँ,
2: अच्छा बचपन कटे बीत आप रहो, जन्म कटे हुए हो?
3: जोधपुर में हुए जन्म, प्राइमरी स्कूल पढ़ता ने, शनिवार सब होते ने, उन सब हमेशा मैं फर्स्ट आता हूँ गाउन में।
2: गाना क्या गावता, राजस्थानी के हिंदी भी?
3: राजस्थानी गावता।
2: अच्छा कोई पुराना गानो याद है आपने, जिको स्कूल में कोई टाइम में गायो आप?
3: हाँ बहुत पहले तो जीरो गायो मैं,
2: एक बार सुनाओ नहीं थोड़ा, जिको स्कूल टाइम में गायो वो।
3: अरे नवीरे पट्टी में जीरो बायो, दोए दोए पनिया आई मारा साजन, मत भाव परिण्या जीरो, ओ जीरो जीवरो, बेरी रे मत भाए मारा परिण्या
2: क्या बात
3: जीरो।
2: है, आज की खनक आप रही है, आवाज री जी की आप रियाज करियोड़ो है, ओ किकर करियो आप, किकर आप रही आवाज ने आप मेंटेन रखी?
3: मैं रियाज आज की कौन करूँ सा, ईश्वरी कृपा है, सरस्वती कृपा है।
2: अच्छा तो उन कारण ही आप कर रहे हो। शो तो आप घने करिया वाला देश भर में, विदेश में?
3: पूरा हिंदुस्तान में करियोड़ा है।
2: अच्छा तो कितना शो कर लिया करीब?
3: मारा सो हो गया समझ गया 100-150।
2: अच्छा इतना शो कर लिया, और इन्हें शोर मैंने लोगारी जी की डिमांड वे वहां कहीं वे ज्यादातर,
3: राजस्थान कितना रिवे
2: तो जी का साउथ में जाएगा और आप?
3: राजस्थान।

0: नहीं आवे सब,
1: अच्छा
0: और डांस और कार्यक्रम रखा नहीं तो
1: हाँ
0: दूजी
1: हाँ
0: जाते वाले आवे फिर डांस आनंद लेवे।
1: अच्छा डांस राजस्थानी गीता माती जी वे।
0: हाँ
1: अच्छा पापा बात चलते हैं, पापा ने बात अधूरी रहेगी। स्कूल रमाइन आप शुरुआत करी तो घरे की डांट वांट नहीं पड़ती आपने? कहो तू गावे एक पढ़ ने जावे, स्कूल जावे एक पढ़ तो गाँव ने जावे, क्योंकि कोई कहे
0: नहीं
1: उन्हें
0: नहीं
1: कि
0: मार तो इतिहास बहुत अलग ढंग रहा ऐसा
1: बताओ नहीं थोड़ो।
0: के स्कूल में जिन पहले भर्ती हुए ना तो मैं अपना आप जान भर्ती हुए हो, मैंने कोई भर्ती नहीं
1: अच्छा
0: कराया।
1: आप रमानुज गया स्कूल? ठीक है
0: 10वीं तक मैं मारे घर वाला कोई मतलब सहयोग नहीं दियो ना, हालिया कदी घर स्कूल में ना
1: अच्छा
0: पूछो कदी की क्लास में आया है। 10वीं में जिन सब्जेक्ट चेंज करना नहीं
1: हाँ
0: उन टाइम हमारे ब्रदर ने पूछो, मैं कहा सब्जेक्ट कह लूँ को तो क्लास में आया हूँ 10वीं में आया हूँ।
1: था पड़े और 10वीं में आई पढ़ते
0: हाँ
1: पढ़ते था ही नहीं पड़ी।
0: था ही नहीं बढ़िया था।
1: अच्छा की स्कूल पढ़ता आप?
0: मैं पहले तो अनुमत स्कूल पढ़ता हूँ पचा महिला बाग में,
1: महिला बाग में 10वीं कटू करी पे।
0: महिला बाग करे
1: अच्छा 10वीं बाद पे आगे कितना पढ़िया फिर?
0: आगे पचा मैं कॉलेज गयो, कॉलेज फर्स्ट ईयर करी पर ब्रदर डेथ हो गई मैं कॉलेज छोड़ दी।
1: फर्स्ट ईयर बाद छोड़ दी।
0: हाँ दुकान छोड़ दी, दुकान संभाली
1: अच्छा दुकान में थे कहीं काम हुआ था?
0: होलसेल पान और धंधो होलसेल
1: अच्छा
0: कोरा पान रो
1: हाँ हाँ
0: जब वो बाढ़ में जैसलमेर सब जगह मैं ही बेचता पान सब।
1: अच्छा पान रो पान रे धंधो बचे घान रे धंधे में की कराएगी आप?
0: वो तो ब्रदर डे तो मेरे गाँव तुम्हारा चालू रहो तो
1: अच्छा उन टाइम
0: प्रोग्राम।
1: जिन टाइम आप दुकान भी संभालता गाँव ना काम उन टाइम भी करता तो
0: हाँ
1: आप टीम ही आप अकेले ही जा
0: हाँ टीम है पूरी
1: बजे साज बीजा भी ही क्या बजावनी?
0: सब। हाँ मन आवे हारमोनियम आवे
1: अच्छा
0: हारमोनियम गान बजाऊ।
1: तो हारमोनियम कट हुई क्यों?
0: हाँ?
1: हारमोनियम किन कन हुई क्यों आप?
0: मैं मार मर्जी ही क्या सब।
1: आपने कोई गुरु है जिसको आपने की सीखा
0: मारे
1: रहे
0: गुरु जी
1: है?
0: तो देखो एक तो भगीरथ जी गोड़ा
1: अच्छा
0: माला
1: वैसे
0: बगा पढ़ता ने उन टाइम रिहर्सल करता जो छोरा नाचता मैं हंस दियो

0: एक तो भगीरथ जी गोड़ा
1: अच्छा
0: माला
1: वैसे।
0: पढ़ता ने उन टाइम पे को रिहर्सल करता जो छोरा नाचता मैं हंसियो मन के हटी आतु अब तू डांस करेला
1: अच्छा आप हसे ना आपने फसायो डांस में पचे।
0: जदू पचे मैं डांस करियो पसंद रहे बाना और खूब सराहना करी अच्छा बढ़िया पर हमारे गीत माते जी डांस करियो मैं और पचवे के बहुत बढ़िया पर उन टाइम मैं एक कविता लिखी एक
1: आप लिखी
0: हाँ
1: की
0: वह लिखी मैं सा कितना परिवर्तन आज हुआ हम छात्रों में नए युवकों में उन ऋषियों की संतानों में भारत के नौ निहालों में
1: क्या बात
0: अब काजल टिकी पाउडर में अपना ही स्वरूप सजाने में कितना परिवर्तन आज हुआ तो बगरी जी का तू लिखे मैं कहाँ था और बहुत बढ़िया लिखे हो जर के और क्या कर
1: अच्छा आपने प्रोत्साहित करियो वे और क्यों मतलब
0: हाँ
1: खत्म मत नहीं बंद मत कर दे लिखते तो रहिए
0: हाँ
1: तो
0: ओके तो एक
1: कभी।
0: दिन जोरदार नाम करेला
1: अच्छा आज
0: जो ईश्वर की
1: देखो
0: कृपा भगीरथ जी की कृपा है
1: हाँ
0: कि आज मारा घने गीत लिख दिया मैं हजारों गीत लिख दिया हजारों भजन लिख दिया
1: बिल्कुल आपरा खूब गीत और भजन लुगारे जवान माते है गांव गांव बाजे डाणी डाणी बाजे।
0: हाँ
1: अच्छा कविता लिखन नो शौक की कर लागियो जब गावते गावता कविता लिखन
0: वो
1: की।
0: बचपन में कहीं माना एक एक टीचर आ जो भी कोई शब्द दिया ए शब्द बना कविता बना लाओ
1: अच्छा प्रैक्टिस करने वास्ते आपने।
0: हाँ
1: हाँ
0: ए कविता में आना चाहिए शब्द या मैं बनाई कविता कविता बना ले गयो उन टाइम पांचवें पढ़ता मैं तो भाई जी बता कड़ी कैसे भाई लायो उनमें कविता बनाई सा जब बापू गए मुंह मोड़ हमें यहाँ छोड़ ओ बापू प्यारा दुनिया में कौन हमारा और तू
1: अच्छा
0: लिखे कहो फिर शब्द दिया
1: तो और
0: फिर
1: लिख
0: लिख हाँ उठो पजामा लिखनो अभी आ चुके
1: लिखने शौक पाया गया और वो धीरे धीरे
0: हाँ
1: गाना भी लिख तो आप जे कविता लिखते लिखते आप गाना लिखने की तरफ की कर बढ़िया कोई आप साथी जो कोई हाँ जिको आपने प्रोत्साहित करियो या जिको
0: नहीं मानो
1: आप
0: गुरु जी
1: भागीरथ जी के अलावा और किन कनु सीखे आप।
0: हाँ भगरे जी ने को बाकी तो बस अपना आप ही हमारे मदर बहुत अच्छा गावती
1: अच्छा
0: भजन अर्जस अच्छा गावती
1: कई नाम मदर
0: पार्वती
1: अच्छा पिताजी रो नाम
0: कल्लाराम जी
1: अच्छा कितना टावर टूबर आप भाई बहन कितना आप लोग।
0: मारा मैं तीन भाई हैं मैं बहन को नहीं
1: अच्छा
0: दो ही भाई गुजर गया हम छोटा मैं हूँ
1: आप छोटा हाँ तो आप जिन्हें हम गाँव था घरे गाँव था जिधे माता जी की क्या होता नहीं आपने
0: नहीं नहीं माता जी समय तो प्रोत्साहन देते थे बड़ा उगाओ
1: कभी गलत
0: उगाओ
1: गाँव था तो
0: हाँ
1: टोकता
0: वे हरजस वगैरह सिखा होता मना ब्याह वाला
1: हाँ
0: गीत वगैरह
1: सिखावता। कोई अनुभव बताओ कोई आप कहीं गाता हो माता जी आपने की कहे वो कोई एडो घटना भी जी याद
0: नहीं
1: आवे
0: नहीं
1: तो।
0: के कौन कह बता मैं अच्छा कह बहुत बढ़िया गावा
1: अच्छा नहीं कभी टोक्यो है कौसा ही नहीं गा रही हो यूं गा या यूं गा कोई सुर ऊंचो नीचो होता हो तो
0: नहीं नहीं कोई टको टके नहीं है सब समझो
1: बढ़िया इंच कहे हो यूं। अच्छा उन्हें बाद मैंने आप जिन्हें गांव निहरू हो गया पचे आपरा कुछ राजस्थानी लोकगीत है वे बड़ा फेमस होया वे
0: हाँ
1: किया क्या लोकगीत था जिसका आप गाया बड़ा दुनिया भर में धूम मचाई वे गाना।
0: हाँ गीत घने लिखे मैं और मैं करीब करीब मारा गीत ही गाया मैं सब
1: तो आपरा जी का फेमस गीत है वे बताओ नहीं किया क्या है
0: अबार तो कंवरो टाबरियो है ब्याह बीनने
1: ब्याह बीनने बिल्कुल मैं तो है वो बढ़िया ही जे ओ गानो की कर आयो आपरे मन दिमाग रे माई
0: यार
1: आयो।
0: दोस्त बेटा जो दो तीन जने शादी वे गया हमारे शादी नहीं हुई यार कि घनौना बनाओ कने
1: मतलब उन वाले गाड़ो बड़ो ने कहे आपने
0: जर मैं गाना बनाया
1: कितना कई कितना छोर आप रहे दोस्त भी जाके आनो कितना साल पहले लिखियो आप उन्हें
0: और
1: मोर कहीं रहे।
0: 70 में
1: अच्छा
0: लिखियो सन 70 में लिखियो
1: आप 21 साल रहा उन्हें 30 साल रहा
0: हाँ और
1: चाल।
0: 79 में एलपी रिकॉर्ड बना दी एचएम नो टाइटल हमारा
1: अच्छा
0: एक एलपी में वो है वो एक ईपी है चारों गीत मारे जाए और
1: अच्छा
0: एक है फिर ईपी जो में ड्यूट गीत है
1: अच्छा जी
0: चारों मारे
1: मतलब
0: जाए
1: तो ओ ब्याह बिनणी माते थोड़ी बात करो मने कि इना जिन टाइम आप लिखनी हरू करे वाला तिना अंतरा वजह की करता है करिया आप कि दिखायो उन्हें इन्हें सुधार उधार करियो या आप खुद ही सब करियो।
0: नहीं मैं खुद ही करियो आकाशवाणी में आया था क्या
1: हाँ
0: जरा आकाशवाणी क्या गाओ वो गीत
1: अच्छा उन टाइम आप आकाशवाणी में ऑडिशन दियो पास हुए आप लोक संगीत
0: ऑडिशन
1: में
0: तो मैं जयपुर में दियो
1: जयपुर
0: पहले
1: पास हुए।
0: जयपुर गाओ तो पहले मैं
1: अच्छा
0: जब मैं 13 रुपया की पे आया था मैनेडर जयपुर हूँ पाकिस्तान है कर दिया
1: हाँ जी
0: ना
1: ने पर जोधपुर आकाशवाणी खुल गया था पटा
0: हाँ
1: ट्रांसफर
0: हाँ
1: है तो ओ जी को गानो है ब्याह बिननी वो पहली बार कटे गए हो आप।
0: पहली बार तो ये कोई

0: से सो करो, लड़का लड़का पूरा ग्रुप है हमारे कोड़ा।
1: अच्छा, पर पूरा ग्रुप है।
0: मुंबई, हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, पूरा इंडिया में आज कटे भी राजस्थानी प्रवासी है भाई, नहीं मन जाने सब।
1: हाँ, वो तो आपने तो राजस्थान गाना हिसाब तो हैंग ऊपर ना महापुर ही जावे
0: भाई, साथ आसाम हूँ, बेंगलोर हूँ, हमें तो जगह जगह स्टेशन बन गया पकड़े को, बहुत पावरफुल स्टेशन हो
1: पहले। हाँ, पहले आप खूब जगह आते, खूब चिट्ठियां भी आती है पोस्ट कार्ड में, लिखकर आता कड़ूराम प्रजापति का कोई गीत सुना,
0: एक रिकॉर्ड तो और ऐसा जिनते मारो दौर चल रहा था, उन्हें सारा लेटर मारे गया।
1: अरे दौर तो आप आज भी है, आप चिंता क्यों करो, दौर कोई खत्म हो है कि कड़ूराम जी दौर को खत्म है?
0: लिख लो बताओ, एक थाना लेटर है, मैं किने के गाना बनाओ, अगर गाना लुकआउट नहीं है
1: पर जी भाई भी देखे कि इतना पढ़ा की कर, इतना हरा चिट्ठिया है, अब गानों तो एक होना होना है, नाम पढ़ना का गाना होना, वहाँ वो भी स्थिति आई है।
0: पर नारायण जी बहुत नाम फास्ट बोलता, बहुत बोल देता है,
1: फटाफट फटाफट नाम बोलता, मैंने याद आयो नारायण जी बहुत तेजी, और आप गाना बड़ा फेमस होता। ब्याह भिन्नी के अलावा कोई और किया क्या गाना हिट होया आप?
0: तुझे गाना लिखे ऐसा एक वो आया बाजरे थारो कीचड़ो लागे घणो सवाद,
1: थोड़ा खुणाओ नी,
0: अरे बाजरिया थारो कीचड़ो लागे घणो सवाद, लागे गणो सवाद, लागे गणो सवाद, बाजरिया तारो कीचड़ो लागे गणो सवाद।
1: अच्छा कड़ुराम जी, एक चीज और बताओ कि आप एक संस्था बनाई और उन संस्था के थ्रू आप नया नया प्रोग्राम करिया, आ कला जी की है आ डूब नहीं जावे, इन्हें लारे कुछ और आप लोगों ने तैयार करिया टीम रमायण, आप कुछ ज्यादा लोग है जिका आप बाद में जी की आप
0: कई तैयार बेड़ा
1: गावे गाना भी?
0: हाँ, गावे गाने गावे नाटक ही करे।
1: अच्छा, थोड़ा मने आओ बताओ कि नया छोरा जी का गाना गाँव नहीं हरू कर रहा है या गा रहा है या अब नाम कमाने कोशिश कर रही है, स्टेज में संघर्ष भी कर रही है, तो वेण वास्ते कई कहनी चाहो आप कि कर सफल हो सके गावण में?
0: वन तो मैं कैसा है ना जाऊं जो वही कहूँ भाई, तो ये लेने में आया हो मारी जितनी हेल्प है मैं थाना करने तैयार हूँ, कि नहीं आवे मर को आओ, कोई पया नहीं लू मैं, हारमोनियम सिखा दे, गाना सिखा दे, लेकिन आओ। इस राजस्थानी भाषा को प्रसार प्रसार मैंने किया है बरसों से,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और इस चीज में लगा हुआ हूँ मैं, राजस्थानी से कहीं गाऊ नहीं दूजे का,
1: सिर्फ राजस्थानी गाने जी।
0: हाँ, सिर्फ राजस्थानी।
1: बहुत बढ़िया है, आपका राजस्थानी गाना बहुत फेमस है, भजन भी जब भी गाया आप?
0: हाँ,
1: भजन
0: भजन गाने गाया, लिखी अब भजन 200-300 किताब छप रही भजनारी।
1: एक आप बहुत फेमस भजन आओ, मैंने याद नहीं आ रही है कहीं हो, वो
0: कर्मा रेखा,
1: कर्मा रेखा ही खुणाओ नहीं वो मत

रे की भैरे तीजो बजारा रे घाट चौथोड़ो पेरे पूर्णिया भैरे मत दीजो मावड़ली ने दोर करमारी रे का न्यारी न्यारी।

0: लगी।
1: ये एक ही घर में चार बहन, चारा ही कर्म अलग अलग है, तो कुण कुण कटे कटे जावे। इन भजन मैंने बहुत अच्छी बात कही। तो शो भी आप करिया, गज भजन भी गाया, राजस्थानी गाना भी गाया, कोई एडो किस्सो याद आ रही हो आपने, जेटा आपने लगे कि आज तक तो आप सबसे बढ़िया शो वो रहे हो?
0: मारा करी परी सारा सब बड़े हुए था, कटे हूँ फेल हुए, कटे कटे 200 करे हूँ, 601 हॉल में, दूजो सौ दूजे हॉल
1: कितना
0: में,
1: लोग रहे होता भीड़ जो वहां में
0: हॉल
1: अपने?
0: हाउसफुल ब्लैक होता हमारा टिकट
1: अच्छा,
0: मारा।
1: और
0: आओ तुम लड़का लड़कियां ले लागते ऑटोग्राफ आते।
1: ना आप ऑटोग्राफी खूब दिया
0: हाँ
1: वाला।
0: और हमारे किताब बिकती, फिर किताब पता साइन करावता, मैं साइन क्यों करो, खरीद देना।
1: खरीद दो और की थोड़ी दवा किताब आप छपाई है तो। अच्छा, कोई अड़ो सपनों जी को हाल अधूर हो, आपने लगे कि अभी काम होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट आप रो बाकी है या जिन माता आप काम कर रहे हो?
0: मैं चाहूँ सह के लोक संगीत माते मैं कुछ करने चाहता हूँ, लोक संगीत ने ना राजस्थानी भाषा प्रसार मैं प्रसार करने चाहूँ। माँ मद्रास में जावा जाना वे मद्रासी ने बोलते थे, मैं कह टाबरा ना घर में था कम से कम मारवाड़ी बोलो, आज सिंधी कितना साल बैठा आया ना, लेकिन घर में अंग्रेजी बोला है।
1: हाँ, लेकिन आप अपनी भाषा नहीं छोड़ी।
0: हाँ नहीं छोड़े, इसलिए अपनी भाषा छोड़ो मत, घर में मारवाड़ी बोलो।
1: हाँ, घर में बोला तो जो जितना ज्यादा लोग बोलनी शुरू कर ले उतनी अपने
0: हाँ
1: मारवाड़ी फेमस हो वाला।
0: नहीं तो राजस्थान हम जले को नहीं,
1: हाँ,
0: संस्कृति
1: धीरे
0: खत्म हो
1: धीरे
0: जाएगी भाई।
1: अपने राजस्थान में सिमटने नहीं रहनी चाहिए,
0: हाँ
1: स्टेट बाहर जावनी चाहिए सब। कोई और करुणाम जी, अपने इतना श्रोता आपने सुन रही है, आप बहुत मतलब मुरीद है, आप प्रशंसक है बहुत श्रोता, वैने की बात कहनी चाहो आप आज रेडियो माध्यम हो।
0: मैं तो यही कहूँ सा, जितना हो सके रेडियो आते राजस्थानी गीत ज्यादा से ज्यादा सुनो, और राजस्थानी भाषा ने आप ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करो और बोलो, और बोलो राजस्थानी पत्रिकाओं पढ़ो, घर में पढ़ो, बच्चों ने पढ़ो, राजस्थानी भाषा रहो, ज्ञान दो, अपने संस्कृति है, इन्हें भूलो मत, इन्हें आगे बढ़ाओ।

0: बिल्कुल, राजस्थानी संस्कृति अगर आप जिंदी रखाला तो आप अपनी परंपरा ने जिंदा रखाला, परंपरा साथ अपना लोकगीत जिंदा रहेगा, लोक संस्कृति जिंदी रहेगा, लोक परंपरा
1: हाँ
0: जिंदी
1: हाँ
0: रहेगा। स्टूडियो में आऊंगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सखिया अबार आपा सुनी एक रिकॉर्डेड भेंट वार्ता जिनमें आपा सुनी मनीष सोलंकी री लोकप्रिय गायक कालूराम प्रजापति सु बातचीत और इनरी प्रस्तुति ही राजेश लामरोड री। और अब आपा बात करा राजस्थान री धरती धोरारी और अठेरे पहनावारी अठेरे ओढ़नियारी।
3: बिल्कुल पूनम जी, अपन अठे राजस्थान रे माए अलग अलग मौका रे माते अलग अलग तरह रा ओढ़ना या ओढ़निया है जो कि ओढ़ी जिया करे। अपनी संस्कृति री एक पहचान है, इमा अपनी संस्कृति साफ झलक कर सामने आवे है।
2: बिल्कुल सही क्यों मंजू जी, हरेक ओढ़नी रे पीछे कोई ना कोई त्योहार रीत और इतिहास जुड़ियोड़ो होया करे। लहरियो, धनक, मोठड़ो, पोमचो और दामड़ी इन ओढ़निया रा खास नमूना है। और अपा बात करो लहरिया री, तो लहरियो सावणरे महीना में जब बादल री घटा गिरे और मोर बोले उन टाइम लहरियो ओढ़नी रो रंग है जिको जमिया करे। लहरियो जो तिरछी रंगीन धारिया रो लहरियो अपनी बहना तीज त्योहार माते ओढ़ने गीत गावे और झूला झूले। इन्हें प्रकार री बात करा तो प्रतापशाही, राजशाही, समुद्री, पचरंगी, जयपुर, जोधपुर रो लहरिया है जिको मशहूर है।
3: बिल्कुल, इन्हीं तरीका हूँ। दूजो अगर बात करा तो देखो मोठड़ो हुयो पूनम जी, मोठड़ा अपन जोधपुर का घना प्रसिद्ध है। इनमें तिरछी धारियां है जो कि एक दूजा ने काट तोड़ी रिया करे और इनो प्रयोग अपन कोई भी तरह का शुभ त्योहार माते कर सका।
2: अब बात करा धनक री, तो धनक रो मतलब इंद्रधनुष। जो इंद्रधनुष रे महीने सात रंग होया करे उन्हीं बात धनक ओढ़नी रे महीने भी कई रंगारी छटा होया करे। इनमें रंगारी पतली पतली आड़ी धारियां बनियोड़ी होया करे।
3: बिल्कुल, इन अलावा बात करा अगर पोमचारी तो पोमचो है वो भी दो तरीका रो रिया करे। पोमचो एक तो पीलो पोमचो रे जो कब पुत्र प्राप्ति रिमाते रिया करे, और जो को लाल कलर या गुलाबी पोमचो है वो पुत्री रे जन्म रे अवसर माते उड़िया करे।
2: बिल्कुल, और अक्सर इन महीने मांगलिक चिन्ह चिड़कली, हाथी, मोर ऐसी अगली चीजें है जिको बनियोड़ी होया करे।
3: बिल्कुल, इन्हें अलावा आप बात करा रहा तो हाड़ोती क्षेत्र में काला रंग रो चीड़ रो पोमचो प्रसिद्ध है। दामणी ओ अपन मारवाड़ री एक प्रचलित लाल रंग री ओढ़नी है। इन अलावा बात करा लालार री तो आ शेखावाटी क्षेत्र में भाई रे द्वारा बहन ने भेंट करी जन वाली एक ओढ़नी है। उन अलावा अपन अठारी गुजर जितनी भी बहना है वे ओढ़नी रे चारों ओर गुगरा लगाए इन्हें ओढ़िया करे। इन अलावा तारा भात ओढ़नी, केरी भात ओढ़नी, जवार भात ओढ़नी, मोरिया भात ओढ़नी और तितली भात ओढ़नी।
2: बिल्कुल, इनमें राजस्थान री मिट्टी री महक, अठेरा त्योहार और उजास और बहना रे मन रो श्रृंगार बसे है।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बिल्कुल पूनम जी, तो अब आप कार्यक्रम रो देखो टाइम हो रही है पूरो, तो आज री आपारी बंतल ने अब ही निवेड़ा और ले ला सकिया हूँ सीख, तो आप री सखी मंजू चारण
4: और पूनम देवड़ा ने दिराओ सीख चाला
3: राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोस

0: सिर्फ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडापड़ी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुद्दुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुद्दुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य,

0: और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर

0: दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे

0: एक आम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
0: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
0: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खासतौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
0: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
0: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
0: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हम

0: में अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
1: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग

0: भाई।
1: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
0: अच्छी कहानी थी। भाई कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
1: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
0: हाँ चलो चलो, वहाँ पे चलो, पानी चलो, होगा।
1: चलते।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
0: दीदी।
3: कौन है?
0: दीदी।
1: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
0: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
1: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
0: हाँ, पर ठंडा पानी था।
1: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
0: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
0: नहीं।
4: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारे दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
2: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
2: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम

0: तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
0: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लाओ
1: अम्मा, लो।
3: घर भी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम

से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, हाँ। है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुको, रुको। जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: सब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था

0: कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
3: उधर से।
2: हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
5: सर, जी सर।
2: कोई शक?
5: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर। जी सर।

0: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
1: जी सर।
0: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी, जैसे धीरे
1: धीरे धीरे
0: दबे पाओ, बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
1: रेंगेंगे।
0: जी सर। कोई भी उठकर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
1: एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
1: यस सर।
0: अब हथगोला फेंको।
3: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सायकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोता हमारे साथ बने रह सकते हैं रात्रि 11:10 तक। सभा का आगाज करते हैं युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से।

0: राम राम सा माइड भाषा रे इन खास युवाणी कार्यक्रम में आप रो घने मान स्वागत है। जिया की आप सबा ने ठा है कि आज है बुधवार रो दिन और इन दिन में सुनावा आपने राजस्थानी लोकगीत और लोक भजन। यदि आप माने फरमाइश से भेजनो चाहो तो आप हमारा व्हाट्सएप रा नंबर जगह है 94133-29-359 एक बार नंबर फिर सुन ले रहा हूँ 94133-29-29-359। हमारा व्हाट्सएप का नंबर 94133-29-359 पर आप रो नाम और पतो लिखकर माने भेज दे रहो। आज इन कार्यक्रम में मैं आपरे सागे रवाला, मारो नाम है देवी सिंह और मारे सागे
1: साथी नाम है आपरो रेडियो साथी रघुवीर सिंह।

0: शब्द दिया करा। आज रो राजस्थानी शब्द है सिंकड़ो। यदि आपने सिंकड़ो राजस्थानी शब्द रो हिंदी अर्थ मालूम है तो आप माने व्हाट्सएप रे नंबर माते इन रो अर्थ लिखकर भेज दे रहो। हमारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133 29 359।
1: सगड़ा शुरू करा इन साथ ही फरमाइश रो सिलसिलो। आज रे इन कार्यक्रम रे आप पहली फरमाइश आबा ताई पूर्ति किनी है सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र सु। भेजन वाला रेडियो श्रोता है दीपक सैनी, परमिला और अनुश्री सैनी।

0: साधना मैड बासार इन कार्यक्रम में फरमाइशी कार्यक्रम में यदि आप जुड़ना चाहो तो आप माने व्हाट्सएप रे नंबर माते मैसेज लिखकर ने भेज सको। हमारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133 29359।
1: साधना अगली फरमाइश आपने लिखकर भेजी है गांव अलसठ सो भेजन वाला नियमित रेडियो श्रोता है श्रवण सिंह राठौर और यहाँ रा सगला साथीगण।
0: फलोदी ग्रामीण से फरमाइश लिखकर भेजी है मनोज पंचारिया और रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान फरमाइश लिखकर भेजी है दिल्ली से।
1: देचू फलोदी से आप साथ जुड़िया है खेते सुथार और देव किशन सुथार।

साथ ना आप रिफरमाइश ने पढ़ने लाग रहे कि आप इन राजस्थानी लोक गीता और भजनारे फरमाइशी कार्यक्रम ने कण ही चाव सुन रिया हो। साथ ना अगली फरमाइश माने लेखर भेजी है सादुल सर जिला गंगानगर सु भेजने वाला रेडियो श्रोता है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ अरियारा साथीगण। इन्हें साथ ही भोपालगढ़ राजस्थान सु आपार साथे जुड़िया है धर्मेंद्र चीपा कपिल चीपा और पूजा परिहार। भोपालगढ़ सु ही आपा ने फरमाइश लिखकर भेजी है राजेश मेघवाल और मोहन प्रजापत। यार साथ ही भोपालगढ़ सु ही आपारे साथ और श्रोता जुड़िया है राजेश देवरिया किशन सोनाक्षी आरती अरियारा साथीगण।

सतना माइडवासा दिन कार्यक्रम में मैं हर कार्यक्रम में अपने प्रदेश रे एक शहर की बात किया करा, उन शहर से जुड़ी जानकारी मैं आप रे सागे साझा किया करा। आज मैं आपने शहर ने जी बात करा तो वो शहर है जैसलमेर। सजना जैसलमेर की बात करा तो अठे एक जीवन तो इतिहास है। जैसलमेर रो एक नाम और भी है सोनारगढ़। जद सूरज री किरण इन शहर माई पड़े तो लागे के पूरो शहर सोने रे आभूषणा सू

जादी होवे। जद सूरज अठे डूबे तो आ मरुधरी रेत मोतियां सू कम नहीं लागे। अठेरा किला अठेरी हवेलियां देकर आपनी नस ऊपर ही अटक जावे। इन इमारतां री ऊंचाई नापता नापता अपनी आंखियां थक जावे। ऊंट सवारी तो अठेरी प्रसिद्ध है ही, साथे साथे अठेरो नाच नृत्य कला कालबेलिया अठेरी ही प्रसिद्ध है। जद आपा गड़सी सर झील रे पाड़े बैठ रहा खावा तो बस आपनू जीव में शांति सी भर जावे। यदि आप भी इन शहर में घूमिया हो तो आप रा विचार मारे सागे जरूर साझा करो। मारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133-29-359। एक बार नंबर फिर सुन ले रहा हूँ, 94133-29-359।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सादरा आपरी फरमाइशा मारे तई लगो लग पूरी। अगली फरमाइश माने लिख भेजी है, गांव मीठा तहसील सिंदरी सु अपर साथे जुड़िया है नाग सिंह राजपुरोहित तनवीर भवेश खुशी अर्गजेंद्र।
5: रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर सु अपने सागे जुड़िया है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी।
4: सरस्वती एजुकेशन ग्रुप शेरगढ़ जोधपुर सु अपर साथे जुड़िया है कुंभ सिंह लोकेंद्र सिंह और सुखाराम साई।
5: गांव मेराना तहसील बावड़ी जिला जोधपुर सु फरमाइश लिखन भेजी है छेलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनिता और फूली देवी।
4: सादुल सर जिला गंगानगर सु अपर साथे जुड़िया है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़।
5: भोपालगढ़ सु राजस्थानी लोकगीत री फरमाइश लिखन भेजी है भलाराम ढाका राम जीवन श्यामलाल देवड़ा।
4: प्रताप नगर जोधपुर सु अपर साथे जुड़िया है मनोहर चितारा सरोज चितारा पंकज करण अर्जुन।
5: चांपासर जिला फलोदी सु अपने सागे जुड़िया है प्रेम कुमार आदुराम राधा प्रजापति और लीला कुमारी।
4: गांव रघुनाथपुरा श्री गंगानगर सु अपर साथे जुड़िया है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी। तो साथ यहाँ श्रोताओं की पसंद माते आप सुना आ राजस्थानी लोक रचना।

परदेसरा सगड़ा मिनखान बताता घणो हर खोरियो है कि 12 मई रे दिन सुप्रीम कोर्ट राजस्थानी भाषान लेर घणो जोर को फैसलो सुनायो है। राजस्थान री सरकार ने आदेश जारी करता थका बोलियो है कि सरकारी और निजी स्कूला में राजस्थानी भाषा ने विषय रे रूप माई तरीके सु किताबा में शामिल करे। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर 2026 तक इन काम री रिपोर्ट मांगी है। आपने बता देवा कि इन प्रयासों अब लाग रियो है कि बेगी ही अपनी माइड भाषा ने 8वीं अनुसूची में जगह मिल जासी।

साथियों अगली फरमाइश अपने लिखकर भेजी है धनेरी तेलीवाला उत्तराखंड से। अपने फरमाइश भेजने वाला रेडियो श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाब। यहाँ साथ ही नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से अपार साथ श्रोता साथी जुड़िया है पी एस नहलकर, निर्मला, विशाल और यहाँ परिवार वाला।

0: भजन रोजो।
1: सदड़ा आपने में एक राजस्थानी शब्द दियो सिंकड़ो। राजस्थानी शब्द सिंकड़ो रो हिंदी अर्थ है जब आप दही ने माथा आप दही रो छाछ वगैरह बनावा तो उन टाइम जो कि भी मान एक लोहे को कुंदो लाग गया करे, एक लोहे की चीज़ लाग गया करे, एक क्लिप लाग गया करे लोहे की, उन आप राजस्थानी भाषा के मान सिंकड़ो बोलिया करा।
2: सदरा बात करा फरमाइशरी तो आगली फरमाइश आपने लिख कर भेजी है पुराना तालाब डुमराव सू। भेजन वाला रेडियो श्रोता है वली उल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। यार साथ ही सदुल सरसू भी अपार साथ श्रोता जुड़िया है राम कुमार और थानाराम। एक फरमाइश और अपार साथ जुड़ी है भोपालगढ़ सू, इन मायने मोहनलाल प्रजापत और राजेश। यार साथी गण अपने फरमाइश भेजी है।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के

0: 7%. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates, UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West of the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation. And with that, we end this news bulletin.
1: Medium wave 564.97 meter, अर्थात 531 kilohertz पर. ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है. कार्यक्रम विवरण. विवरण में पहले आज के शेष एवं कल के मुख्य कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त जानकारी उनके प्रसारण समय की भी. पहले जानें आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त जानकारी. श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय और रात 10 बजे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत. रात 9:15 पर कार्यक्रम सुधा में आज एक कहानी, अपराधिनी. कहानीकार है डॉक्टर वीणा चुंडावत. किसान भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी साय 7 बजे और 7:30 होगा सीमाड़ेरी गूंज का समय. फिल्मी गीतों का आनंद श्रोता उठा सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे. कार्यक्रम विवरण में आपने जाने पहले आज के शेष कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त जानकारी. श्रोता आप कुछ ही पलों में जानेंगे कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त जानकारी.

कल सवेरे 6:05 पर कार्यक्रम श्री रामचरितमानस और 6:15 पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम वंदन श्रोता सुन सकेंगे सुविचार के संग। गैर फिल्मी नगमों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत का प्रसारण होगा क्रमशः सवेरे 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। लोकगीतों का आनंद श्रोतागण उठा सकेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 10:00 और दिन में 12:00। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सवेरे 7:00।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार कार्यक्रम नमस्कार का प्रसारण रहेगा कल सवेरे 8:30 पर। किसान भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी 7:30 और साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम दिन में 1:05 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मिर्ची की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम गणगौर दोपहर 1:15 पर। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी साय 5:00।

कार्यक्रम युववाणी गणगौर और नमस्कार। ये तीनों ही कार्यक्रम श्रोतागण सूर्य नगरी एवं FM सन सिटी चैनल पर सुन सकते हैं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। इसके अंतर्गत आपने जानी आज के शेष एवं कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी एवं उनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आप सुने एक देशगान।

0: प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति येन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिक कालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000+ 2,00,000 कोटि रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,80,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् एमएसपी मध्ये सर्वाधिकं 22,600 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धे सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितं। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितमस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824,00,000 मैट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णव अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000 कोटि रूप्यकाणां अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रूपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रान्तरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं डीएमके विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलं 88 शतासनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मन्त्रीरूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये महाराष्ट्रे पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश झारखंड पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः तीव्र वायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉक

0: नौकर इत्यत्र उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य सप्तदश दिनांकतः अप्रैल मासस्य दश दिनांक पर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षी परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाएगा।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
2: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान

0: वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, एआई और स्टार्टअप जैसे नवाचारों को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8,00,000 रुपए में सौदा किया। एसओजी ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का आरआरटीएस का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम।

प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस

0: 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच आज कई उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 दिन का सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत 727 थानों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कड़ी जांच की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलौदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अट्रू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की

0: जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रितों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों 12 जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया बहुल शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू बारा विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 12 में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें 12 की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखा रा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी, फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 शाखा रा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपया रो चुकारो करियो जावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।

0: श्री वैष्णव बतायो कि सब बत्ती 622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। इसा गई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4023 रुपया और बाजरा रो मोल 2900 रुपया प्रति क्विंटल फैला। तुअर्री दाल रो सरकारी मोल 8450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माए सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन बत्ती साखा रे खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,500 करोड़ रुपया खर्च कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावा सारू खास योजना ने मंजूरी देनी।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवन वाला मायो 85.20% फीसदी पास फेक्या। इम्तिहान माए लड़कियां रो नतीजो 88.86 फीसदी जबकि लड़का रो नतीजो 82.13 फीसदी रहो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माए लीरीजी परीक्षा माए 17,68,000 बत्ता विद्यार्थी शामिल फिया, चमायो 15,07,000 बत्ता पास फेक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायो 86.78 फीसदी पास फेक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां मायो 76,469 पास फेक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए इस साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रहो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षावां रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जबकि सेकंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न ली जावेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माए फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माए हेराफेरी करण रा आरोप माए 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माए राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा न बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण री ठा पड़ी। इन पाछे वहां का न्यू RPSC रा रिकॉर्ड माए फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8 लाख रुपया माए सौदा करण रेठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक जोड़ और खुदरेपाण उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवाना नौकरी करण वाला री बजाय नौकरी देवन वाला बनबा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणाई नौजवाना तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह माए 358 विद्यार्थियां ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियां ने सोनारा तमगा देर नवाजी चिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा बारा माए राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पाछे आ जानकारी दीनी।

0: मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 14 शाखा रा सरकारी मूल में बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी जी। प्रदेश रा तुणी अर लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी। फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता, अब सुने कार्यक्रम चौपाल।

0: यतीन्द्र भाई देखो तपत तावड़ और इन तावड़े रे मायने जका भी काम करे या तावड़े में काम करने वाले घरों बारे निकले बाणी एक भुलावण है कि वे घरों भूखे पेट नहीं निकले। और जल जको है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। कटही मान लो 30 लाख तो आ नहीं हो चुनो कि भाई आगे जान पी ले उन हाल तो काम चले है। शरीर ने स्वस्थ रखने वास्ते शरीर मायने जल री जकी मात्रा है वह उचित रूप आपने होनी चाहिए। और जट कटे भी आपा देखा कि नहीं भाई 30 नहीं भी लागी है तो 2 घूंट पानी पी ला क्योंकि आपनो शरीर जको है तावड़े रे मायने है। तो देखा कि लोग कह नहीं नहीं हमें पिया पिया घंटे 2 घंटे बाद उठ जावान पी ला यू कर ला तो होले होले कहीं है कि इनू डिहाइड्रेशन भी हो जा। कई बार डिहाइड्रेट शरीर जको है कई शरीर का जो फंक्शन है वह में
1: तावड़े री लाई रे मायने के आदमी चाल तो बेहोश हो गयो। अब ओ कोई ने कारण ठा नहीं पड़े क्योंकि वो पानी पी नहीं निकलियो घर सुबह आप खानो खा नहीं जाओ तो आपने कई एक कमजोरी महसूस हुए तावड़ो अतरो पड़े कि आप रे पसीना रे साथे साथे पानी री ओस री बूंदा बनने बारे आई जावे तो आपने पानी री तो सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल भी जाओला तभी कहला के पानी री कमी है ग्लूकोज चढ़ाई दो। तो भाईड़ा आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और पानी पियो नहीं तो फ्रिज रे पानी तिरस नहीं बुझेला। तिरस बुझेला आपने माटी रे मटकी रे पानी सो और वो पियोला नहीं। आप एक बोतल साथे रहो खो घूट घूट पियो और आपकी जिंदगी अच्छे से जियो। गुरविंदर भाई आप देखा कि आज कई नदी नाला तालाब आ जिका पहले आपने पानी पीने रे काम आता लेकिन आजकल लोग कहीं करे कि उन माई ने ले जाने कोई पूजा रे सामान है टेक देवे कोई कचरो टेक देवे कोई उन पानी रे आड़े पाड़े घर बनाई देवे तो ए चीजा सही नहीं है। वो पानी भी कदी कोई अपने जीवन रो हिस्सो होता।

0: बिल्कुल जका आपणा परंपरागत जल स्रोत हा नाडी हा वो एक दौर हो के आपा नाडी रो पानी पीवता नारू रोग हो तो अब वो समय खत्म हो गयो। अब सरकार एक बहुत लूठी और मोटी योजना बनाई है जीरो नाम है जल जीवन मिशन।
1: बिल्कुल गुरविंदर भाई, आ 2024 रे मैंने आई थी गुरविंदर भाई, आज लगभग 2 साल पहले जल जीवन मिशन, इनरो एक ही मतलब हो के हर घर जल, नल सू हर घर तक जल पहुंच जावे, ताकि लोगा ने तावड़े री बलती लाए रमाई ने माथे ऊपर मटकी उचार ने नहीं लानो पड़े। लोग है नी आपन तो आराम से सहरा रमाई पानी मिल जावे गुरविंदर भाई नल रे साथे, लेकिन तावड़े री बलती लाए रे मैंने देखा कई लोग कोसो दूर पैदल चाल चाल ने उन पानी ने माथे रे माथे ले रावे और पछे उन्हें पिए। पानी री कदर तो सिर्फ एक किसान भाई और गांव वालो परिवार ही जान सके। शहर माई ने पानी री मैं देखो गुरिंदर भाई इतनी कीमत री पहचान नहीं है, क्योंकि वे कदी उन्हें दुख नहीं देखियो।
0: बिल्कुल देखो के जी मैं फोड़ा पड़े हुए नहीं ठा है क्या चीज कहीं है। आज 50 साल पहला अगर दूजी पीढ़ी माते जावा तो पश्चिमी राजस्थान में जल री कमी ही, पानी री कमी ही, और बेरा खोतान हुए ने तेवतान वो टाइम गयो। हमें भाई देखो गांव रा छोटा छोटा कस्बा है या डाणिया रो कोई गांव है तो उठी पानी जो को बंद बोतला में मिलन लाग गयो। तो इन जकी इन विकास री इन दौर री जकी कल्पना है वो आज 40 साल पहला नहीं करता। अब शहर मायने तो देखो के जको सॉफ्ट ड्रिंक है, जल री जकी पानी री जकी बोतल है, बे यूं सजाड़ी जान कोई पूरो है री ओ पानी पिए। लेकिन थे बात कही के भाई मटकी रो पानी, मटकी रे पानी री भाई कोई होड नहीं है। और खास तौर माते पश्चिमी राजस्थान में आपा देखा तो अठेरी जकी माटी

0: में मोकल शरीर जकी मटकी है जकेरे माते काला काला दाना हुए
1: बिल्कुल
0: तो वो अपने आप में एक फ्रिज है कि भाई मटकी में बरियोड़ो पानी ओले ओले बाहर निकले एक एक बूंद कहीं है कि मिट्टी उछनन बाहर निकले। तो जब कोई द्रव्य पदार्थ है वो इन प्रक्रियाओं जब निकले नहीं
1: बिल्कुल
0: तो वो उर जो को टेम्परेचर है तापमान है वो में परिवर्तन हो जावे यानी मटकी रो पानी ठंड हो जावे। तो मटकी रो पानी जो को है वो निरोगो पानी है सरकार री जो की योजना है जल जीवन मिशन ये रे महीने के एडो कोई भी घर नहीं रहना चाहिए जट्टे के भाई टूटी नहीं। तो सरकार इन योजना मुजब आप आवेदन कर सको हो और कनेक्शन जो को पानी रो है वो ले सको। जट्टे जट्टे भी असुविधा है जल री कमी है तो सरकार उर वास्ते डिक्की बनावे जो की प्रेशर वास्ते बड़ी बड़ी ऊंची टंकियां बनावे। पहला है टंकियां कोई 50-60 किलोमीटर में एक आधी देखने मिलती हमें आप किणी क्षेत्र में जावा तो लगभग हर गांव रे मायने पेयजल व्यवस्था वास्ते टंकी री जकी है वह व्यवस्था करियोड़ी है। टंकी नहीं है तो मोटा जका पाइप है वाणी पाइप लाइन बिछोड़ी है और काम लगातार चल रही है।

0: बिल्कुल गुरिंदर भाई, और काम तो 2024 से शुरू हो गयो। लोगारी दुख ने देख ने और उन रमाई ने हर घर नल सुजल और इन काम ने शुरू कर दियो हो। लाइना बिछ गई है और अब है 2026 रमाई गुरिंदर भाई आगे बढ़ गया। हाँ, पाइप री लाइना तो बिछाई दी हाँ, लेकिन अबे लोगा ने पानी भी एक क्वालिटी रो मिलना चाहिए, गंदो नहीं मिलना चाहिए, ताकि लोगा ने पीवन रे माई ने भी कोई दूसरी परेशानी नहीं हुए। एक तो वह चीज उन गुणवत्ता ने ध्यान में रख और उनरो ध्यान रखे और पानी निरंतर आना चाहिए। अब बार 2026 रे माई ने इन दो बातारे माते इस ध्यान दे रिया है कि पानी लाइन तो बिछी गई है, लेकिन अबे पानी री निरंतरता और उनरी गुणवत्ता। लेकिन उन वास्ते गुरिंदर भाई खासो खर्चो भी करियो है सरकार। मारे देखने में आई है लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा रुपयो लागियो है इन रमाई ने। और क्या है कि कोई गांव रमाई ने एक सुजल गांव आईडी भी बनेला, जिन्हें सुजलाम भारत रे नाम से भी जानी जाला। और पानी रे खातर गुरिंदर भाई एक बार महोत्सव भी मनाया तो मार्च रे महीना रे माई ने उन्हें जल महोत्सव रे नामू जानी जो हो। और लक्ष्य है कि लगभग 20 करोड़ रे लगभग लोगा रे घरा रे माए नल सु जल पहुंच जावे और व्याने दुख नहीं देखना पड़े।
1: बिल्कुल भाई यतिंदर, जल है तो जीवन है, जल है तो विकास है। और एक वो टेम जटे लुगया माथे माथे पानी ढोन लाव तीन पूरे घर माई ने एक सदस्य री जकी है वा ड्यूटी लागी होती कि भाई पीवन रो पानी ने पचे घर में मान लो पशु है तो बाने वास्ते पेयजल व्यवस्था करनी, तो एक पूरो जको मिनखरो शारीरिक श्रम हो सिर्फ पानी वास्ते खर्च हो जाओ तो इन श्रम रो उपयोग दूजी जगह ले वास्ते श्रम शक्ति री पहचान करने वास्ते ही सरकार थे के अजू करोड़ों रुपया खर्ची है। तो देखो भाई गांव रे मायने बदलाव अब आहिस्ता आहिस्ता महसूस दुनिया कर रही है, लोग कर रही है, गांव में रहने वाला मिनख है वे भी कर रही है। गांव रा जका मोट यार है वे पढ़न लिखन वास्ते शहरा में जावे, तो पहला खाली एक सरकारी नौकरी रो ही ध्यान रखता कि भाई टाबर पढ़ लियो हाल नौकरी कौन लागियो। हमें देखो उन सोच में भी बदलाव आ गयो कि टाबर पढ़ लिख नौकरी री जगह कम और व्यापार मुजब ज्यादा बढ़नी चाहे। उन्हें ध्यान है कि व्यापार मायने प्रगति है और नौकरी रा जगह है वह सीमित है। तो भाई देखो अब हर साल कितना लोग डिग्री लेवे, यानी कई तो प्रोफेशनल डिग्री ले, कई बीए बीकॉम बीएससी री डिग्री ले, तो समारे वास्ते सरकार सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं करा सके। आपने इन नौकरी के साथे साथे या तो कोई हुनर या तो कोई काम या कोई व्यापार उरी सोच भी दिमाग में आपने रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल गुरिंदर भाई सही कहो कि जतरा

अग्नि देश रे मायने है उन सबारे खातर तो सरकारी नौकरी नहीं आ सके। एक ऑफिस रे मायने देखा 10-15 आदमी और वे हजारों आदमी रो काम करे तो नौकरी उन विभाग रे मायने उन डिपार्टमेंट रे मायने एक जगह 10-15 आदमी वे। अगर उन रे वास्ते आप लाखों आदमी जावनी चाहो तो वो संभव नहीं हो सके है। और पढ़ावन रे खातर आपने जोर दे रही है सरकार। पहले तो गुरविंदर भाई बालकियां ने पढ़ाता ही कोनी हाँ, लाड़कियां ने पढ़ाता ही कोनी हाँ, वे घर माई नहीं रखता। लेकिन अब सरकार कहे कि अपनी लाड़कियां ने भी पढ़ाओ और जे अगर थाने में ने कोई पढ़ाने की लालसा कम वे तो मैं भी सपोर्ट कर देवा।

0: बिल्कुल भाई, लड़का लड़की दोनों एक समान, जको करे अणी पढ़ाई में
1: व्यवधान।
0: व्यवधान, वो है पाप रो भागीदार। जकी सोच, जको समाज, जकी रीति, जको रिवाज, लड़कियां री पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करे, ये रो मतलब वो परिवार उन बच्चियां रे माते बहुत मोटो गुनार पाप करे।
1: बिल्कुल सही कहा गुरुविंदर भाई। आज लड़की पढ़ी लिखी नहीं वेला, उन्हें शादी करियर पछे उन्हें सुख मिले दुख मिले, वह आप जीवन यापन की कर करे। जे अगर पढ़ी लिखी है तो वह आप खुदरे कमाई सु घर भी चलाई सके। अगर मान लो पति री हालत खराब है, कमजोर है, तो उन्हें मजबूती दे सके। तो इन खातर गुरविंदर भाई मैं बताऊं कि सरकार एक योजना लाई है अपनी लाड़कियां वास्ते, लाडो
0: बिल्कुल,
1: योजना।
0: लड़कियों रे वास्ते, लड़कियां ने कठे कोई दिक्कत नहीं आवे, कठे कोई परेशानी नहीं वे, उर वास्ते इन योजना रो नाम राखियो है लाडो।
1: बिल्कुल गुरविंदर भाई, लाडो योजना। उन मायने गुरविंदर भाई जन्म सु ले ने शिक्षा तई उन्हें 7 टुकड़ा रे मायने राशि दिया करे। किती देवे? 1,50,000 रुपयो। और वह सीधी जावे गुरविंदर भाई आज टाइम रे मायने सीधे उनरे खाते रे माये। तो पहली तो दे देवे उन्हें जन्म होते ही एक पहली किस्त, दूजी देवे उन्हें टीको लागे जाते, पछे तीजी देवे पहली क्लास में, छठी में, पछे नौवीं में, पछे बारहवीं में, पछे जीवी वा 21 बरस आपरा पूरा करे, बाकी जितनी भी बच्चोड़ी रकम है उनरे खाते रे मायने आ जावे। और उनसु उनरे कई एक शिक्षा रे मायने कोई व्यवधान भी नहीं आवे और वह आगे भी बढ़ सके।
0: भाई लोग, अब जरूरत है अपनी समझ ने विकसित करने की, अपने सोच ने विकसित करने की। ए जका पुराना रीति रिवाज है उवेरे जके नए विचारा ने अपनाउं दी। पहला टाइम हो के भाई एक लड़के री चाह रे मायने 8-8, 10-10 बच्चा पैदा कर ले,
1: बिल्कुल
0: के
1: गुरुजी
0: छोरो
1: भाई,
0: कोनी, छोरो कोनी, छोरो कोनी। देखो भाई, आज रे टाइम में जितो छोरो नियाल करे उनसु ज्यादा छोरिया नियाल करे। और जका गांव रे मायने उदाहरण स्वरूप आप देख सको कि जिरे एक ही लड़की है, वो पढ़ा लिखान कामयाब करिए तो वो ज्यादा होरोन सुखी है। अगर आप आपरो बुढ़ापो बिगाड़नी नहीं चाहो, अगर आप आपरी आर्थिक हालत है उए ने सुधारनी चाहो, तो भाई परिवार सीमित राखो। और परिवार री जकी कन्या है, परिवार री जकी लाडो है, उए री पढ़ाई मुजब, उए ने आगे बढ़ाने मुजब सरकार कदम कदम माते आर्थिक रूपों सहायता दे। उए रे साथे साथे उन्हें हर तरह री सुविधा दे के किनी तरह भारत री जकी आधी आबादी है वह पढ़ लिख और होशियार बने। तो देखो भाई, यतिंदर तई उगी घनी
1: बिल्कुल
0: और चौपाल कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो। तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न कर सारू आप रे साथी गुरविंदर विश्नोई।
1: अरियतेंद्र प्रजापत ने सीख दिलाओ
0: राम
1: राम।
0: राम।

किसान भाई बहन अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: अरे फाटक उड़ान कट गया हो, सिद्ध लुक न बैठा हो
1: डालियोरी डालियोरी बड़े मैं आ रहा कमरे में आ रहा
0: बडेरा कहन गया न बोलो बा के किनी घरे जाओ तो कही एक आडो खटखटान पच जाना
1: चाहिए खटखटाओ भली खेकारा करो
0: खेकारा तो बुजुर्ग करे मैं तो आज तक
1: जवाना छाने छाने छाने बढ़ जाओ तो ना दे
0: अरे छाने छाने बढ़नो को नहीं चाहिए
1: नहीं तो हूँ पूछू कोई हमार कह नहीं भाई कोई कह की करनालो है हीरा फेरी बहुत बहुत क्या कर करना है फाटक बजाना आवे कोनी
0: अरे नवलोबा
1: हम कार मैन वो बम जुजुड़े में वही तो ही फर्क
0: अरे तो बड़े रे कहन गया नवलोबा के जो को ताला है नी हाउ करा वास्ते जो है चोरा वास्ते थोड़ी हो
1: हाँ बात अच्छी
0: तो थाने उड़ा लोड़ी है तो हाउ करा वास्ते उड़ा लोड़ी है
1: के कौन भाई मैं हाँ मुल्क रा सोर वा
0: अरे अरे नवलोबा आ कई बात कह दी नहीं नहीं नहीं नहीं तो हमारी गलती हुई हमारी गलती
1: गलती थे ए है जो कह नहीं कम गाना हुनता है बीते हुए लम्बो कर्षक शासन मुतबल कौ है
0: मुतबल ओ है नवलोबा के आज जो को पुण्यतिथि है हसरत मोहानी जी री और ओ जो गजल और गानो लिखियोड़ो है वो जो को हसरत मोहानी जी रो लिखियोड़ो है निका फिल्म में फिल्मायो गयो
1: था ओ हो ठीक ठीक थारी निका होयोड़ी है
0: मारी निका होयोड़ी है नवलोबा
1: वा तो जद हूं हैंगन बन हैंगन कह दियो भाई मैं पहला विचार करियो के भाई कौटा पश्चिम भाई ब्याह हिड़ो नहीं हिड़ो मैं तो ताज मोहम्मद जी नी कहो अल्लाह दीन जी नी कहो और बरकत खान जी नी कहो और हज भरदो सारे खाबान हैंगन कहो मैं बच्चू खान जी नी कहो
0: हमें जरूरत को नहीं नवलो
1: वाकई कौन के कौन मारे नहीं कहना भाई हूँ
0: हमारा आका दी जाए नहीं नवलो बा तो पनीज को मैं
1: वाह बढ़िया करे तो मुबारकबाद है आप तो आप दावत तो है जो थोड़ी सेठी गाल दी की मान बुझे ही कौन
0: गर्मी पड़े नवलो बा
1: ओ ठीक ठीक
0: अरे पढ़न दो जो को थाने कही है की मैं पूरा इंतजाम करते
1: वाकई कौन अरे बादशाह अरे तावड़ो पड़े तो मुके देखो भाई तो कौन तावड़ो कोई एक मत पड़े कोई
0: नहीं आ बात अच्छी है
1: पर बात आ है तावड़ो पड़े है करे जरूर है पर हूँ तो कौन के देखो पंख पंखे किने के तावड़ो पड़े
0: देखो नवलो बा
1: जीव जिंदा किने के तावड़ो
0: किने कोनी कह के भी मोटी बात आ है के भी ऊपर वालों जुको सब ने जुको अकल दी है और इंसानियत की खातिर जो को है जीव जीना और जिता भी है वो भी अपने ख्याल रखना चाहिए
1: अरे वो तो कौन सा आप जेड़ो प्रयोग है नी क्या भाई मनी तिर लागे मनी है जो को क्या गर्मी लागे मनी तावड़ो लागे मनी भूख लागे रेडी है जीव जीना और ने लागे हो तो इनमें मार तो ही है भाई देखो कोई सौ का काम करो तो कह नहीं की भाई कोई बीतोड़ी बात है बा कहूँ है की भाई आपने याद रही
0: रही सर
1: अरे पूरा काम करो तो बस भाई याद तो रहे पर मैं बस कह नहीं कि एक तो फूल वे नहीं कांटा वे
0: कांटा हुए नवलोबा और मोटा काम जो को पुण्य रा काम है ऐ जो को बड़े रा कहन गया कि हाथ हाल ही
1: हाँ हाँची बात है देखो दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान और पांच अंगलियां करियोड़ो कामड़ो
0: है सा है
1: तो वो है जो को मिनक ने कह नहीं आज मैं कोई गांव में मोटो पीपली कह बड़ो बायड़ो तो कैसा ओ कुण बायो ऐसा

0: ताज मोहम्मद जी पायो
1: हाँ
0: तो उन्हें रोकड़े रात नाम हो जा
1: यूं यूं नवलोभा में आपने बताऊं जो को अपन बात करी हसरत मोहानी जी री आज अपन वाणी बात कर रही है इन वास्ते के वे जो को एनी एक तो शायर तो हाई हा पत्रकार भी हा हैं मोटी बात है कि भारत री आजादी वास्ते घनी लड़ी लड़ी और जेल भी गया हा
0: देश री क्या नी आजादी रे सिपाहिया
1: और हाथे हाथे नवलोभा इंकलाब जिंदाबाद रो नारो दियो और हेंगू पहला जो को पूर्ण स्वराज रो जो को विचारधारा प्रस्तुत करी ये भी भारत पूरो पूरो अपने हाथ में आजाद होना चाहिए।
0: ओहो हसरत मोहानी साहब कहो
1: बिल्कुल
0: बात मोटी कही और देखो अगर शायर है लिखा रहा है कोई क्या नहीं भाई खबर नवीस है बन तो घनी क्या जुगु जुग आगे है दिखे
1: बिल्कुल दिखे
0: इनकलाब जिंदाबाद कहो तो मोटो कह नहीं के
1: नारो हो
0: नारो वो आज ही नारो लागे रू उबा हो जा
1: अच्छी बात है
0: और है जी को कह नहीं की भाई भारत ने पूर्ण स्वराज मिलना सही है आ बात गांधी जी ने मुंडे तो कह नहीं कही जी ही है जी को मान लिख दी मैं
1: हाँ हेंगू पहले यही जी प्रस्तुत करी ही बच्चे गांधी जी इन्हें जो को अधिवेशन में निकालने वे करी ही
0: हाँ बात है जी अरे बात साहब देखो एड़ा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके अत्याचार जुलम सहन करिया और बे कोई कह नहीं मगजू कोई एड़ा था कौन बे तो काम तो मोटा कर
1: बिल्कुल गया
0: आग्राम बार नाम है पर बाते पर बाने याद करा और अकी दत्रा गुल पेश करा कहनी कोटी कोटी नमन करा तो हमें आरो लिखी उड़ बो गीत रो मैंने पहला हुनो
1: हुनो हुनो न लगा
2: अभी अलविदा मत कहो।

0: है तो रू ओ काम का रूहानी है वो।
1: हाँ है साना वल्लभा
0: कोनी
1: है
0: ओ मपत्रो है मपत माते लिखियोड़ो है
1: मोहब्बत माते लिखियोड़ो है दर्द माते भी लिखियोड़ो।
0: हाँ हाजी बात है देखो मिनगरी जिंदगी में कई मोहब्बत नहीं है तो बस बात मुतबली कोनी
1: की कोनी मतलब कोनी सही
0: हां तो मोहब्बत तो भाई देखो बस फाव में मिले कोनी खैर की कोन मारे मन नु भले कोई बात भी मारे निकल जाई मारे आप रिलो हमें थे भले कोन फो तो यार जलमिया बाबा बस बताओ जल्दी
1: बताओ कहेंगे पहला मैं आपने बताऊं कि पुण्यतिथि एक तो हसरत मोहानी जी री थी दूसरी बादल सरकार जी री भी आज पुण्यतिथि है।
0: पंजाब
1: रखवा पंजाब रखो नी हाँ नौलोबा है कोलकाता रहा हाँ। और अपने अभिनेता नाटककार निर्देशक और रंगमंच रहा जो सिद्धांतकार रहा
0: सरकार
1: नुक्कड़ नाटक ने लोकप्रिय बनायो और नुक्कड़ नाटक ने लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान
0: लोगों ने जागरूक करिया और कोई बात नहीं हम जी करी तो बे हमें कह नहीं होले होले सेठ पुगा है तो एड़ा बिरला मिनका नहीं कोई नहीं भूल सके आने कोटि कोटि नमन है और मंदिरा भूल सदा हूँ बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊ आर के नारायण जी के बारे में है जो को अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी रा साहित्यकार रहा और अंग्रेजी साहित्य में जो को उपन्यास लिखिया मैं मोटो नाम कमायो
0: लिखा
1: भारत सरकार यानी लिखावट वास साहित्य अकादमी पुरस्कार नवाजियो और पद्म भूषण
0: देखो के बहुगुणी मिनखा गुणी विद्वान हाँ तो आप रचना रची और भाई पर भाषा में और कहनी के भाई जग चावा काम कर गया तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मनडेरा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊ आज जो को हिंदू जैन जीरी भी जो को पुण्यतिथि है जो को अपने टाइम्स ऑफ इंडिया री जो महिला चेयरपर्सन ही
0: ओ ठीक ठीक है कहनी के पुख्ता हमसा लिखना भाई यार कह के भाई लुगई जात हो नहीं तो सो को काम करियो और खबर नवी शाह तो खबरा मिनकारी दी तो आने कोटी कोटी नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं हेमलता गुप्ता जी के बारे में ए जो को अपने एक भारतीय चिकित्सक ही और जो को अपने लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज ही वाणी प्रमुख और निदेशक भी रेडी ही और चिकित्सा में योगदान वास्ते यहाँ बाद में पद्म भूषण भी सम्मानित
0: देखो डॉक्टरी में तो डॉक्टर हेमलता जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वासावा देखो जग जावा काम करिया लुगई जात हो आज भी कह रही के भाई बहन बेटियां है बालकी इनकी कह भाई देखो मार्ग मिले तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी है जो को नमन है मंदेरा फूल चढ़ावा बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं कि आज जो को पुण्यतिथि है बाबा हरदेव सिंह जी री और रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर जी बाबा हरदेव सिंह जी जो को भारत

0: दादर जी को प्रसिद्ध संत था और संत निराकारी मिशन रा आध्यात्मिक गुरु हा और रामकृष्ण देव जी को हा अपने प्रसिद्ध पुरातत्वविद हा।
1: ठीक ठीक है जी को कह, एक तो कह के धर्म कर्म री खोज करी, एक है जी को कह नहीं कह जूनी दबियुड़ी और कोई सभ्यता संस्कृति बार बाबत है जी को आप जानकारी दी
0: दी सान
1: करी जी को तो अनेक कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है और मन रेरा फूल चढ़ावा। और बड़े दूजो कम है तो देखो मने कई मारी आंखिया में दिखे कई बात
0: कई दिखे नवलो बा
1: थारे थारे मन में कई है बा मने आंखिया में दिखे
0: कई कई दिखे
1: हूं नहीं कह नहीं उरियाणो देख समझ जाऊं समझिया थारे आंखिया में मने कहो सानो दिखे एड़ो पलको दिखे हूं पहले गीत लुणो पर से देखो
0: हुणो मने
1: लो हुणो तो परो पर था पड़े थाने

0: ठीक है
1: हाँ ठीक है। अरे नवलोबा मैं समझ गयो, मोहब्बत री जद बात चली, दर्द री जद बात चली, जद मोहब्बत रो गानो थे मनो।
0: हाँ बात है, मोहब्बत जिंदाबाद है, ठीक है नी। तो मैं ओ कहूँ समझ में आई सारे
1: आई समझ में आई नवलोबा। आज को जन्म जयंती है असी सैन जी री, वे इन फिल्म में

0: वासावा हरदिसियो हुनोन चाहे नाथ हुनोन चाहे कवाली हुनोन चाहे अहमद हुनोन चाहे है जो कह नहीं भाई कोई दूजो तीजो की हुनो तो बात तो बार बार हमद में आवे आगे मार्ग है
1: आगे मार्ग है अलग अलग मार्ग हो सके नवलो बात लेकिन जो कोई स्टेशन एक है
0: हाँ जो हम हवाई जहाज ने कोई तो हवाई जहाज कह कोई एरोप्लेन
1: एरोप्लेन
0: हाँ वो कह बात आगे
1: आगे आगे बात है नवलो बात
0: उड़े तो कह नहीं आसमान में
1: देखो नवलो बा अबे देखो मारक ठेलो खंगाल होते हैं हिम्मत है मैं पिछली बार तो नींबू पुदीनो लाए हो शरबत आज मैं लाया हूँ बेल बिल्लो
0: ओ बिल्ला ठीक ठीक बिल्ला बिल्ला हाँ तो ठीक है हमारे है जो रात रो कुल्ली भिजो दे
1: हाँ भिजो दो ना
0: सुबह मैंने शरबत पी आम बढ़िया चौकी लागी और तो बढ़िया करियो सा गया तो हुके ही कोनी
1: हुके कोनी ना
0: हूँ आन भिजो मेल दे हाँ तो वाह वसीम भाई वाह तो मैं है जो देखो का आज गियर से
1: है सा गियर
0: आज पहले ही मैं है जो कहीं है कोई मारे क्या निका होना दूजा करियो ना है देखो मैं कहीं है जो आप रसोड तैयार कर रखियो
1: बिल्कुल ना बोला
0: तो आज मार तो है थोड़ी हूँ फेर दू माड़ा थे है जी को पढ़ दो नमाज अल्पाज बेलू कर ले वान हमें देखो घनी टाइम तो कोरी नहीं हम तारा हम देखो देखो तारा ही खासा ऊंचा आएगा नंदारी पढ़ गो अल प्रोग्राम टाइम हो गो पूरा तो भाई सड़ू लेवा ही
1: राम राम, राम।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम सीमाणेरी गूंज, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ,

श्रोताओं, आपको सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और गीत आपने सुना फिल्म भ्रष्टाचार से। इस गीत को गाया है सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल ने। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत बद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनते हैं अगला गाना फिल्म खुदा गवाह से। अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज के स्वरों में ये दो गाना। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

श्रोता हम फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत फिल्म समय की धारा से। किशोर कुमार और जय श्री शिवराम और साथियों के सुर में ये अगला गीत। गीत लिखा है MG हसमत ने और संगीत दिया है जुगल किशोर तिलक राज ने।

0: अपने बेटे को दिलवा देंगे, अच्छी अच्छी चीजें अपने बेटे को दिलवा देंगे, अरे हाथी घोड़ा मोटर गाड़ी भी इसको मंगवा देंगे।
1: बंटी अब तो गुस्सा छोड़ो, साथ हमारे गाओ
2: बंटी बेटे, अब तो गाओ ना।

दोस्तों अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक से भले दो से। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीतकार है अनजान और संगीतकार है आर डी बर्मन।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो लीजिए, हम ले आए हैं ये अगला गीत फिल्म दिलवाला से, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में गीत।

फारूक का कलम बंद किया, बपी लाहिरी की संगीत बंद किया। ये अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको फिल्म बलिदान से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

श्रोता फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत। ये गीत हमने लिया फिल्म राम तेरी गंगा मैली से, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये अगला गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल, और इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनते हैं ये अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म सागर से। इस गीत को गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने और गीतकार हैं जावेद अख्तर। संगीत से संवारा है आरडी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम में आज आपने सुने गीत फिल्म भ्रष्टाचार से खुदा गवाह। फिल्म समय की धारा, एक से भले दो, दिलवाला, बलिदान, फिल्म राम तेरी गंगा मैली से और फिल्म सागर से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, और उसके पश्चात 9 बजे News@9। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50%

0: परसेंट या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरूआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।

0: दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect।
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद यह घोषणा की। डॉ सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की

0: 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपये और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their products.

की आवाज सुनते ही धापू रसोई से निकलकर कमरे की ओर भागी तो क्या देखती है कि नैना अपने पलंग पर खून से लथपथ पड़ी है। उसका कमरा लाल रंग की नदी हो गया। पलंग के पीछे की दीवार के ऊपर उसके बाल चिपक गए। दूसरी तरफ दीवारें खून से रंग गई। इसको देखते ही धापू चीखी, इतनी देर में दूसरा फायर हुआ धाएं। नैना को छोड़कर दूसरे कमरे की तरफ भागी तो वहां खून की धाराएं बह रही थी और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। धापू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। बंदूक की फायरिंग सुनकर गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए। दो चार लोगों ने मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो ये क्या, सभी भौंचक्के रह गए। वीर सिंह ने खुद को गोली मार ली थी। मोढ़े पर बैठकर राइफल को दोनों पैरों के बीच में रखकर ठोड़ी पर निशाना साधा, जो को गोली ठोड़ी से सिर को पार करती हुई ऊपर छज्जे पर जा लगी। गांव की स्त्रियां इस मार्मिक दृश्य को देखकर रोने चीखने लगी। हत्यारे, तुम खुद तो चले गए, मेरी बेटी को क्यों मार दिया? वो गोली मुझे ही मार दी होती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। धापू रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, क्यों रोने के लिए छोड़ गए? मेरी दुनिया तो तुम दोनों से शुरू होकर तुम दोनों पर खत्म हो जाती है। मैं अभागन, रोते रोते धापू ने बंदूक उठा ली। धापू के भाई व भाभी ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और बंदूक को दूर फेंक दिया। पी पी का सायरन देती हुई पुलिस की जीप घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। आते ही पुलिस अधिकारियों ने ऐलान किया, सभी घर से बाहर निकल जाएं, किसी सामान को हाथ नहीं लगाएं। सबसे पहले दोनों लाशों का मुआयना किया, रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाकर बयान दर्ज किए। धापू का असहनीय रुदन सुनकर महिला कांस्टेबल उसका बयान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वीर सिंह के पास एक सुसाइड नोट मिला। मैं पूरे होश में अपनी और बेटी की जान ले रहा हूं, इसके लिए किसी को परेशान न किया जाए। पुलिस को पुख्ता सबूत मिलते ही दोनों लाशों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी। अंतिम संस्कार भी क्या, पोटली में बंधे मांस के लोथड़ों का, ना कोई स्नान, ना कोई वस्त्र, ना गंगाजल। ऐसा विभत्स दृश्य देखकर किसी का भी हृदय दहल जाए। वीर सिंह के रिश्तेदार धापू से नाराज थे क्योंकि वीर सिंह के बारवे पर पाक दस्तूर से उनकी पगड़ी खूंटी पर ही टंगी रहने दी। वीर सिंह का नाम लेवा कोई नहीं रहे, यह फैसला लेते हुए उसने पाक दस्तूर की रस्म के लिए मना कर दिया। बाहर पूरा समाज इकट्ठा था, लेकिन धापू अपने फैसले पर अडिग रही। लोगों ने बातें तो बहुत बनाई पर वह किसी से नहीं डरी। उसने अपने भतीजे को यह हक नहीं दिया। प्रॉपर्टी के भूखे इसी का बदला निकालने के लिए उसके किसी काम में मदद नहीं करते और ना ही किसी कर्मकांड में हिस्सा लेते। धापू ने अकेले ही एक साल तो जैसे तैसे रो रो कर निकाल लिया और वह अपने आप आंसू पोंछती और अपने आप को कोसती। दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं, ऐसा सन्नाटा जिसमें चित्कार को महसूस किया जा सकता था। धापू का घर गांव के बीचों बीच था, फिर भी उसके घर का वातावरण मरघट सा था। दिन और रात का फर्क महसूस नहीं होता। दिन कड़कती धूप में धापू को तपाते और रात झिंगुरों की आवाज भयावह होकर डराती। घर के आंगन में पेड़ों के पत्तों की सरसराहट उसमें कंपन पैदा कर देते। शुरू में खुद की परछाई देख सहम जाती, पर समय की गति ने धापू को जिंदा लाश बना दिया था। धापू अकेली बैठती तो पुरानी स्मृतियां सजग हो जाती। रो रो कर आंखों को मूंद कर, नमी को सहज कर, आंसू एक एक बूंद आंख से लुढ़क कर कपोल से होते हुए उसका पल्लू भिगो देते। ना चाहकर भी वह खोए हुए अपनों को खोजने लगती। वीर सिंह CRPF में जवान थे, धापू उनके साथ ही रहती। शादी के काफी साल गुजर जाने के बाद भी उनको औलाद का सुख नहीं मिला। वीर सिंह ने तय किया कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इसके बाद वे गांव में रहने लगे। दोनों ने बच्चे के लिए कोई मंदिर, देवरा या कोई पूजा नहीं छोड़ी, कहां माथा नहीं टेका जहां बच्चे से उनकी गोद हरी हो जाए। शादी के 15 साल बाद नैना का जन्म हुआ। नैना के जन्म के बाद वीर सिंह और धापू के जीवन
को नए आयाम मिल गए। सारा दिन उनकी देखरेख में निकल जाता, समय पंख लगा

गाकर उड़ने लगा। नैना भी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आ गई। गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए शहर के अच्छे कॉलेज में नैना का दाखिला करा दिया। नैना भी बहुत खुश थी, वह बीए तृतीय वर्ष में पढ़ रही थी। तभी वीर सिंह ने जयपुर के अच्छे घराने में उसका संबंध तय कर दिया। लड़का कानून की पढ़ाई कर कोर्ट में वकालत कर रहा था। लड़की के घर वालों ने नैना को देखते ही पसंद कर लिया था। सगाई समारोह शहर में धूमधाम से संपन्न हुआ। वीर सिंह और धापू खुश थे। उनके चेहरे पर सुकून था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने जा रही है। जैसा सोचा था उसे कहीं अच्छा लड़का नैना को वर के रूप में मिला। अचानक मौसम बदलने के कारण धापू की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्हें 3-4 सप्ताह आराम करने की सलाह दी। नैना भी कॉलेज से जल्दी आ जाती और माँ की सेवा में लग जाती। घर पर धापू का आराम पूछने के लिए लोगों का जमावड़ा रहता, कोई न कोई आता जाता रहता। धापू की बहन भी उनसे मिलने आई और अपनी बेटी को नैना की मदद के लिए छोड़कर चली गई। धापू के छोटे भाई का जवाई भी उसको देखने आया। आते ही उसकी नजर नैना पर पड़ी और उसे देखता ही रह गया। वैसे भी उसका मिजाज आशिकाना था। अब लोगों का आना जाना कम हो गया। धापू की बहन की बेटी भी वापस चली गई, लेकिन जमाई साहब का आना बंद नहीं हुआ। कभी कभी तो वे दिन में 2 बार भी आ जाते। बड़े प्यार से सेवा कर के वीर सिंह और धापू का मन जीत लिया। उन्हें लगता कि जमाई जी बड़े नेक इंसान हैं, लेकिन उनका मकसद क्या था इससे वे अनजान थे। धीरे धीरे वो नैना को भी अपनी बातों के मोह पाश में बांधने लगा। बड़े रईस जमींदार थे जवाई जी, उनका अलग ही रुतबा था। परिवार में 10-12 सदस्य, 4-5 नौकर चाकर, मेज पर रखी चाय को उठाने से लेकर सोने तक उन्हें हाथ हिलाने की जरूरत नहीं थी। मालिन, कुम्हारन, नाई सब कृपा की पात्र, मालिक की छाया में पलते उनके परिवार, जरूरतमंदों की सहायता अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए करते। नैना के लिए ये अनोखा एहसास था। इतना करीब से वह कभी किसी लड़के से घुली मिली नहीं थी। वह भी उसके आने का इंतजार करती और घंटों उसके साथ बैठकर बातें करती। वीर सिंह और धापू इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। नैना कॉलेज भी उसके साथ जाने लगी। उन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। उसने नैना को अपने रिश्ते को बचाने के लिए, सगाई तोड़ने के लिए उकसाने लगा। नैना ने भी उसकी बात मान ली। वीर सिंह और धापू को नैना ने संबंध तोड़ने के लिए राजी कर लिया। ये खबर शहर में इस कदर फैल गई कि नैना की सगाई टूट गई। कुछ दिनों तक लोग बातें करते रहे, फिर बात आई गई हो गई। नैना से दूसरे रिश्ते की बात करता तो वो मना कर देती और ये कहकर टाल जाती, पापा अभी मुझे पढ़ने दो, शादी वादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो, मैं तो बेटा बनकर आप दोनों की सेवा करूंगी। वीर सिंह ने नैना को बड़े लाड प्यार दुलार से पाला था, इसलिए वे उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। वे समझते कि गांव की सीधी सादी लड़की है, लेकिन नैना एवं जवाई जी उनके विश्वास के साथ क्या कर रहे थे इसकी भनक भी उन्हें नहीं थी। जवाई जी ने शहर के बाहर गांव में एक कमरा किराए ले लिया। नैना कॉलेज जाने के बहाने वहां उससे मिल लेती। एक दिन वीर सिंह के पास कोर्ट से फोन आया, आप जल्दी यहां आ जाएं, जरूरी बात करनी है, किसी परिचित ने कहा। वीर सिंह कोर्ट से वापस आने के बाद धापू और नैना को गांव चलने के लिए कहा। पूछने पर भी वह चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। रात को सोने से पहले वीर सिंह ने पूछा, अचानक किसने बुलाया तुमको? अपने गांव का छोरा है, कोर्ट में बाबू है। क्या कह रहा था? तुम सुन नहीं पाओगी। ऐसा क्या कह दिया जो मैं सुन नहीं पाऊंगी? जिद मत कर धापू। नहीं, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा नैना की सौगंध। कलेजे पर पत्थर रख ले, मेरा मन बहुत डर रहा है, कह दो। धापू, नैना ने जवाई जी से कोर्ट मैरिज कर ली है, घर पर पेपर आ जाएंगे थोड़े दिनों में। नैना ऐसा नहीं कर सकती, समझदार बेटी है मेरी, सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया इस लड़की ने। तुम लोगों की बातों में आकर गलत फैसला मत लेना, कल सुबह मैं नैना को समझाकर तलाक के लिए राजी कर लूंगी। रात बहुत हो गई, तू सो जा, सुबह का सूरज क्या लेकर आएगा कौन जाने। वीर सिंह धापू के सो जाने के बाद नैना के पास उसे समझाने लगा, लेकिन नैना वीर सिंह की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने बताया कि वह मीतू को तलाक दे रहा है। बेवकूफ लड़की, तो अपनी बहन का घर ही उजाड़ देगी।

0: पापा शादी दो शरीर नहीं आत्माओं का मिलन है, मैं उसे अपना पति मान चुकी हूं और वह मुझे अपनी पत्नी। वीर सिंह ने घुमाकर उसके गाल पर एक चांटा रसी दिया। नैना डर गई और उसके शरीर में कपकपी छूट गई। वीर सिंह ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा मान जा। वीर सिंह चुपचाप आकर धापू के पास लेट गया। उसकी आंखों में आज नींद नहीं थी, उसके हृदय में नैना के जवाब असंख्य बिच्छू बनकर डस रहे थे। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस दिन अमावस थी। वीर सिंह अक्सर इस दिन कुत्तों को रोटी, गाय को चारा डालता था। पौष महीने की सुबह थी। वीर सिंह अल सुबह अंधेरे में ही ये सब कर आया। अचानक घर के पिछले हिस्से में कुछ आवाजें उसके कानों में पड़ी। फौजी आदमी था, सतर्क हो गया। उसने झट से करके उस हिस्से की ओर रुख किया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना अपना बैग जमाई जी की कार में रख रही थी। वीर सिंह ने नैना का हाथ पकड़ लिया। जमाई जी वीर सिंह को देखते ही भाग छूटे। नैना उसे आवाज देती रह गई। वीर सिंह ने कहा, देख लिया अपना चुनाव, पापा मेरा हाथ छोड़ो। अचानक आपको देखकर वह डर गया। डर नहीं गया, उसकी करतूत का भांडा फूट गया, इसलिए भाग गया। नैना मेरी बात समझ, ऐसे रिश्ते कभी नहीं पनपते दो जो दूसरों की मजारों पर नींव रखकर बनाए गए हों। पापा बकवास करना बंद करो, मुझे जाने दो, मैं अपने लिए खुद फैसले ले सकती हूँ। इस तरह जबरदस्ती मुझे घर में कैद करने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी कि मुझे कितने दिनों तक अंधेरे कमरे में बंद रखा, खाने को कुछ नहीं दिया, पीने को पानी भी नहीं, सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होने दी। मैं बालिग हूँ, निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। शादी करना चाहती हूँ, उससे शादी नहीं करने दे रही है। इन हालातों में पिताजी मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ये सुनकर वीर सिंह का माथा गुस्से से फट गया। उसकी बर्दाश्त की हदें सभी सीमाएं पार कर चुकी थी। अपनी लाडली को की हत्या करके धापू से कैसे नजरें मिलाएगा, स्वयं के शरीर को भी अपनी बेटी के भेंट चढ़ा दिया। फोन की घंटी उसे अपने अतीत से खींचकर वर्तमान में ले आई। धापू को पड़ोसन का फोन था, चाय के लिए बुला रही थी। अचानक उसकी नजर नैना के फोन पर गई। सोचा कि इस फोन को बक्से में पटक दूं, पर रखने से पहले एक बार नैना की आवाज सुनना चाहिए। उसने उसकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग को ऑन किया। नैना की आवाज को सुनकर धापू भावुक हो गई, पर अधिकतर रिकॉर्डिंग जमाई जी और नैना के बीच की थी। लेकिन जैसे ही नैना और जमाई जी की रिकॉर्डिंग ऑन हुई, उसकी आंखों से अश्रुधारा फिर बहने लगी। शयन कक्ष में रोशनी नहीं थी। धापू खिड़की के पास बैठी अंधकार की ओर ताक रही थी। धरती पर दोनों हाथों से उसके लिपटे पैर पर असंख्य चींटियां चल रही हैं। समय जैसे स्तंभित समुद्र के समान स्थिर बना हुआ हो, जैसे अनंत निशितिनी के ऊपर अदृश्य चितेरे ने एक चिरस्थायी चित्र को अंकित कर रखा है। चारों ओर प्रलय और बीच में एक विचारक और उसके ख्यालों में एक अपराधिनी।
1: आप सुन रहे कार्यक्रम साहित्य सुधा, डॉक्टर वीणा चुंडावत कहानीकारा। अब सुने अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू। थैंक्स जाना।
2: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जो इस समय

0: हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है जिसमें रूस इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
1: आनंद जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में खाड़ी क्षेत्र में ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
3: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है खासतौर

0: स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको एसपीआरएस बोलते हैं वो है, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है
1: जी।
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता है और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन के अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ

0: बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा. इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कन्फर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी. तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है.
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है. ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है. इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है. ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है. इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने. भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है. करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है. तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था. उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है. कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं. तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है.
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है. क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है. फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला. कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है. पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है. लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके. हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है. इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है. लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है. ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा. लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का उनको भी समय लगने वाला है. लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है. लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत. साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है

0: खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय ये रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिस्रप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिस्रप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा यह मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज टू मेक दैट हैपन। वी सेट आवरसेल्व्स ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030, सपोर्टेड बाय स्ट्रांग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल आउटले।
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूं कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग

0: 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है। सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद ब्लड से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रोडॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपये की बड़ी भूमिका रही है और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रखकर चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो

0: प्रगति है जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते। और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा। और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं, या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में

0: करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है। तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोरेला सेमी हाईस्पीड दौड़ी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाईस्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोरेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश के रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मिले। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
0: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
0: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने दो पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया

0: किया और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी कल से शुरू हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉ काजिम गरीबाबादी, कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री यरजान आशिक बाबेव, नाइजीरिया के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत दुनोमा उमर अहमद और उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री अलोवेव जोराबेविच शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया है और अनिश्चित तथा अस्थिर वैश्विक परिवेश में प्रतिभा और कौशल के आदान प्रदान का महत्व और भी बढ़ गया है। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूस के प्रतिनिधिमंडल के स्वागत में ये बात कही। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सर्गेई लावरोव कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोव ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक प्रमुख परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस परमाणु संयंत्र के लिए नई बिजली इकाइयों के निर्माण में सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत इनोवेट्स 2026 के लिए आयोजित उद्योग जगत के नेताओं के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और संस्थागत भागीदारों ने भारत के गहन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भाग लिया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र जो आईआईटी, आईआईएससी और अन्य अग्रणी संस्थानों से लेकर द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों तक की असाधारण प्रतिभाओं द्वारा संचालित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेचिंग पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गए प्रमुख अधिकारियों में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, टेस्ला तथा स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क और ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक शामिल हैं। मेटा, वीजा, जेपी मॉर्गन, बोइंग और कारगिल के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। कल से शुरू हो रही 2 दिन की वार्ता में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्वता के बीच ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। ये द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक और तकनीकी मुद्दों के महत्व को रेखांकित करता है। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत

0: संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस के 100 से अधिक ड्रोन ने आज यूक्रेन के कुछ इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन में रेलवे बुनियादी ढांचे और नागरिक स्थलों को निशाना बनाया है। इन हमलों में मध्य नीप्रो और उत्तर पूर्वी खार्कीव क्षेत्रों में यूक्रेन के आवासीय और रेलवे बुनियादी ढांचे, दक्षिण ओडेसा क्षेत्र में बंदरगाह बुनियादी ढांचे और मध्य पोल्टावा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष के बीच विश्वास व्यक्त किया था कि रूस और यूक्रेन जल्द ही युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचेंगे। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण अब समाप्ति की ओर है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया, मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने दो पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की

0: आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy the MSP will be 2461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2900 rupees and for tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau